0: नहीं जाएंगे जब तक परमेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
1: Ishika, once again coming back to you, major drama unfolding, it seems like in Tilaknagar, it seems like the political controversy may have just started.
2: Well, yes, Anusha, you know, the political controversy over this and the drama over this only now escalating with this, the Delhi chief of the Aam Aadmi Party now currently holding a protest at Tilaknagar, exactly the spot where this entire controversy unfolded. And he's now sitting on dharna with the Aam Aadmi Party karyakartas and going on to say that until and unless an FII is registered against the Delhi minister, they are not going to leave the spot. We are in fact seeing in the visuals how in fact there's a scuffle that's currently going on between in fact the Aam Aadmi Party karyakartas and the Delhi police officials. And let me tell you that we are, you know, the response that had come from Parvesh Verma, he had gone on to say that he only reacted after the Aam Aadmi Party worker abused his family. And also he goes on to allege that Jarnail Singh, the Aam Aadmi Party MLA from that area, in fact, was allegedly demanding commission from the PWD engineer. Right. So certainly now we are seeing that the war of words only escalating over the matter. Over to you.
1: All right, Ishika, getting you all those details, the drama unfolding in Tilaknagar. Let's tell you how it all started. A political row escalated in Delhi after a video appeared to show PWD Minister Parvesh Verma slapping an AAP worker during a road inspection in Tilaknagar. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal demanded minister's arrest and said he will visit the spot. Verma has defended his action, claiming that the video does not show the full picture. He alleges that the AAP worker abused him first while accusing AAP leader Jarnail Singh of seeking commission over the road work. Verma also alleged that Jarnail Singh's aides abused his family and claimed he reacted in the heat of the moment. The Aam Aadmi Party leader has filed a complaint, demanded disciplinary action, while AAP leaders have demanded an apology. You also saw the dharna which is happening right now outside that entire area in Tilaknagar. The row has now widened into a political confrontation with the Aam Aadmi Party demanding action against Verma, while the minister has hit back with allegation of commission, demands and corruption.
3: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
4: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
5: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे। जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाला उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा वो चीज़ झेल नहीं पाए तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के उन्होंने मुझे उन्होंने

0: लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
1: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी।
2: There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers, clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students, and the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
3: स्टूडेंट के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी, और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई, और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए, और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from lovely professional university where we have seen the students, they were holding protest since morning, and right now the police was trying to use mild lathi charge to disperse all the protesters, but all the protesters they started stone pelting, and the police forced to go back, and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of a lovely professional university where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken action against these protesters.

0: के लिए तैयार है।
1: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
2: हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें। हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
3: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे। आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे।
2: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
1: इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। धन्यवाद।
4: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kishan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
5: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है।
6: सपा ज्वाइन कर रही है क्या? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गई लगा।
5: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे हैं, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर फट जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
6: हेलो पार्षद जी,
5: जी आप नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम क्यों सपा ज्वाइन कर लिए हैं?
6: हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था?
5: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
6: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा,
5: तरकुलानी चालू। पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है?
7: गोरखपुर के सांसद सड़कों कर रहे हैं, हमारे साथ सांसद जी है। सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर कर रहे हैं। भारी बारिश हुई है क्या?
8: बहुत दुखद है। देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले। निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं और कैंपियरगंज में भी 3 पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौतें वो खबर हुई है। उनके परिवार के लिए संवेदना और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें। जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती है, हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम। लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई, पिछले 2 घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो 2 दिन में स्थिति सामान्य होगी।
5: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाएं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि है, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
9: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं

0: की जो है आज एक घंटे के अंदर कुल 116 एमएम बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी पूरे कर्मचारी इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहां भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही वहां वहां हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप वीसी साहब जीटीए के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
1: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
2: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kotub Golf Course, Delhi.
3: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our product.
4: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
1: Now getting you this special report, China's foreign ministry has announced an 8-point consensus following Xi Jinping's visit to Washington. This includes a $30 billion tariff reduction deal, a new trade council, and a fresh dialogue on artificial intelligence. Take a look at this report.

0: ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV.
1: Switching tracks to Delhi now, and it's a slapgate row that's escalating. A complaint has been filed against Parvesh Verma. Aam Aadmi Party has hit the streets demanding action, asking for an FIR to be filed against Verma. And he has countered those allegations and said, and we also have Rahul Gandhi, who's joined the war of words with a vote chori attack. Aam Aadmi Party workers have staged a protest in Tilaknagar demanding an FIR and the arrest of Parvesh Verma. The party says that the complaint over the alleged assault has now been acted upon and has warned of a dharna if the police action is delayed. We have Saheb Singh, Aam Aadmi Party leader, who has filed a complaint against Parvesh Verma and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam. The complaint involves 4 BNS sections. This is including hurt and intimidation. We have Leader of Opposition Rahul Gandhi of the Congress Party weighing in on the issue, accusing the BJP of arrogance and vote theft over the slap row. Parvesh Verma has hit back at Rahul Gandhi, saying that he doesn't know the facts. Meanwhile, the BJP has flagged an earlier FIR against Saheb Singh, and in fact, the case was registered in June at Tilaknagar Police Station under BNS Sections 115, 126, and also with the BJP claiming that he was previously arrested.
2: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
3: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई, तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को, जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया, जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
4: हम लोग नहीं जाएंगे जब तक परवेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी। हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
5: देखिए, अपनी चोरी पकड़े जाने पर भाजपा के मंत्री परवेश वर्मा किस तरह बौखला गए और कैमरे से उनकी चोरी रिकॉर्ड करने वाले को थप्पड़ मार के गुंडों की तरह, किस तरीके चोरों की तरह फरार हो गए, वो आज सब ऑन कैमरा हुआ है। और हमारी ये मांग है, मंत्री जी ने मेरे को फोन किया कि आओ जी, मैं आपके क्षेत्र में निरीक्षण करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आ गया, मुझे लगा शायद सड़क का निरीक्षण, सड़क में क्वालिटी देखेंगे तो PWD के अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई करेंगे। मुझे कह रहे दिखाओ कहाँ से सड़क टूट रही है। मैंने पूरी सड़क कारपेट की तरह उखाड़ के दिखा दी। तो मंत्रियों पर कार्रवाई करने की बजाय जो हमारा साथी रिकॉर्ड कर रहा था, उसको थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के यहाँ से भाग गए। अरे, जब तक मंत्री परवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
1: And let's just switch tracks now to Tamil Nadu. Is the chief minister who's set to launch the new scheme in Madurai, offering a 1 gram 22 carat gold ring to eligible newborns in the government hospitals. The first phase has about 1.28 lakh rings, with babies born from the 22nd of June who are said to be eligible. The scheme draws on the Tamil tradition of the maternal uncle gifting newborns, but the rollout faces political criticism. We have DMK's Udayanidhi Stalin, who has accused the government of Vijay of failing to deliver on key promises, including the allowance for women and also the aid for the young and the free LPG cylinders and crop loan waivers, while also alleging as far as the law and order situation that seems to be worsening and getting out of hand. Vijay's government meanwhile says that the cold drink scheme is aimed at encouraging deliveries in government hospitals of the state. With that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Do stay with us.
6: When others are warming up,

0: Born and has warned of a dharna if the police action is delayed. We have Saheb Singh, Aam Aadmi Party leader, who has filed a complaint against Parvesh Verma and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam. The complaint involves four BRS sections. This is including hurt and intimidation. We have Leader of Opposition Rahul Gandhi of the Congress Party weighing in on the issue, accusing the BJP of arrogance and vote theft over the slap row. Parvesh Verma has hit back at Rahul Gandhi, saying that he doesn't know the facts. Meanwhile, the BJP has flagged an earlier FIR against Saheb Singh, and in fact, the case was registered in June at Tilak Nagar Police Station under BNS Sections 115, 126, and also with the BJP claiming that he was previously arrested.
1: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
2: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई, तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को, जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया, जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
3: परवेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी, हम लोग नहीं जाएंगे। जब तक परवेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी, हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
4: देखिए, अपनी चोरी पकड़े जाने पर भाजपा के मंत्री परवेश वर्मा किस तरह बौखला गए और कैमरे से उनकी चोरी रिकॉर्ड करने वाले को थप्पड़ मार के गुंडों की तरह, किस तरीके चोरों की तरह फरार हो गए, वो आज सब ऑन कैमरा हुआ है। और हमारी ये मांग है, मंत्री जी ने मेरे को फोन किया कि आओ जी, मैं आपके क्षेत्र में निरीक्षण करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आ गया, मुझे लगा शायद सड़क का निरीक्षण, सड़क में क्वालिटी देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई करेंगे। मुझे कह रहे दिखाओ कहाँ से सड़क टूट रही है, मैंने पूरी सड़क कारपेट की तरह उखाड़ के दिखा दी। तो मंत्रियों पर कार्रवाई करने की बजाय जो हमारा साथी रिकॉर्ड कर रहा था, उसको थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के यहाँ से भाग गए। अरे, जब तक मंत्री परवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
0: And let's just switch tracks now to Tamil Nadu. Is the chief minister who's set to launch the new scheme in Madurai, offering a 1 gram 22 carat gold ring to eligible newborns in the government hospitals. The first phase has about 1.28 lakh rings with babies born from the 22nd of June who are set to be eligible. The scheme draws on the Tamil tradition of the maternal uncle gifting newborns, but the rollout faces political criticism. We have DMK's Udayanidhi Stalin, who has accused the government of Vijay or failing to deliver on key promises, including the allowance for women and also the aid for the young and the free LPG cylinders and crop loan waivers, while also alleging as far as the law and order situation that seems to be worsening and getting out of hand. Vijay's government meanwhile says that the gold ring scheme is aimed at encouraging deliveries in government hospitals of the state. With that, we're slipping into a very short break, back with a whole lot more on the other side. Do stay with us.
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Rachel Sager.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
7: A healthier India doesn't happen in a day.
8: It starts with the health.

0: choices that we make every day.
1: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
3: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
1: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health in more hands every day.

0: लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो एसएसपी की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे लाठियां मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई।
1: देखिए स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए, लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की। वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के। उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें, हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे। आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
2: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सबके पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को

0: बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
4: सो मेनी अटैक्स,
3: द केओस।
5: Let's just switch tracks now and get you more news coming out of the United States. And this is in regard to a strip club where three people have died and four have been injured. This is an altercation that turned deadly at the

0: और प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: यू वॉच अस व्यूअर यू ट्रस्ट अस एंड नाउ

0: has also pointed out. He repeatedly is asking, look at the promises made by them, and they are not even able to fulfill any of those promises. Not even one. They are not taking any efforts to do that. That is the issue. Instead of attacking DMK, if you attack DMK, we will also do that. We did not do that prior to the 2026 elections because we thought you wouldn't be a big force. Somehow you've become the ruling party. Now you will not be able to take up, tolerate, if we start attacking you. And that is what we have started doing.
1: All right. Mr. Sarvanan, thank you for the clarification. We will, of course, get in touch with the TVK for their primary response. Mr. Udayanidhi's talent had invoked the Om Kali Jai Kali remark as well. The crowd had responded with a slogan targeting the TVK. Whether the DMK is deliberately taking Vijay on at his own level of political rhetoric, that remains to be seen. We will, of course, try and get in touch with the TVK for their response too. You must note that Tamil Nadu Chief Minister Vijay is set to launch the Thai Maman Thangamodiram scheme in Madurai, offering 1 gram 22 carat gold rings to eligible newborns in government hospitals. Now, the first phase has 1.28 lakh rings, with babies born from the June 22nd date that are considered eligible. This scheme draws on the Tamil tradition of the maternal uncle gifting newborns, but the rollout faces political criticism. You see, DMK's Udayanidhi Stalin has accused the Vijay government of failing to deliver on key promises, including women's allowance, youth aid, free LPG cylinders and crop loan waivers, while also alleging a deterioration in the state of law and order. Vijay's government, meanwhile, says the gold ring scheme is aimed at encouraging deliveries in government hospitals. Here are the reactions you need to listen to.
2: முதலமைச்சர் சொன்னாரு ஆட்சிக்கு வந்து அடுத்த நிமிஷம் கொடுப்பேன்னாரு கொடுத்தாரா கொடுக்கல அதே மாதிரி வேலை இல்லா இளைஞர்களுக்கு மாசம் மாசம் 4500 ரூபாய் உதவித்தொகை ஆட்சிக்கு வந்து அடுத்த நிமிஷம் கொடுக்கறேன்னு இந்த முதலமைச்சர் சொன்னாரு கொடுத்தாரா கொடுக்கல அனைத்து இல்லங்களுக்கும் அனைத்து வீடுகளுக்கும் வருஷத்துக்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர் ஆட்சிக்கு வந்து அடுத்த நிமிஷம் கொடுப்பேன்னு சொன்னாரு கொடுத்தாரா இப்பதான் அதை பத்தி யோசிச்சிருக்கிறாரு என்ன தெரியுமா சொல்லிருக்காரு 3 கொடுப்பேன் 3 கேஸ் சிலிண்டர் கொடுப்பேன் அதுவும் நான் எப்ப நினைக்கிறேனோ அப்பதான் கொடுப்பேன் சொல்லிருக்காரு இது எல்லாத்தோட முக்கியம் விவசாயிகளுக்கு அனைத்து பயிர்க்கடனும் உடனடியாக தள்ளுபடி செய்வேன் சொன்னாரு கொடுத்தாரா எதையும் கொடுக்கல அதே நேரத்துல சட்டம் ஒழுங்கு எந்த அளவுக்கு சீர்கேட்டு போயிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்
3: நாம அத்தனை பேராலும் மறக்க முடியாத ஒரு சோக நிகழ்ச்சி கரூர்ல நடந்தது பிரச்சாரம் பண்ண போறேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கிளம்பி போய் கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் தாமதமா போய் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் வெயில நிக்க வச்சு குடிக்க தண்ணி கூட கொடுக்காம ஒரு கழிவறை வசதி கூட செஞ்சு கொடுக்காம மிகப்பெரிய ஒரு ஜன நெருக்கடியை மக்கள் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி மேடை ஏறி வண்டி மேல ஏறி பாட்டு பாடி கிட்டத்தட்ட 41 பேர் இறப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி அந்த சம்பவத்துக்கு காரணமான ஒருத்தர் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு கூட பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் கூட சொல்லாம திரும்பி கூட பார்க்காம கரூர்ல இருந்து திருச்சிக்கு போய் அங்கிருந்து சென்னைக்கு ஓடி போனார் இன்னைக்கு அவர் முதலமைச்சர் ஆயிருக்கலாம் ஆனா இனிமே அவர் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா இந்த சம்பவத்தை நினைச்சு தூங்க முடியாது நிம்மதியா தூங்க முடியாது ஸ்பெஷல் டீம் அறிவிச்சாரு ஆனா இவங்க என்ன சொன்னாங்க மாநில அரசு ஸ்பெஷல் டீம் அறிவிச்சா நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு கேட்டு அதை கேட்டு வாங்கினாங்க சிபிஐ விசாரணை வாங்கினாங்க இன்னைக்கு அந்த சிபிஐ விசாரணை டெல்லியில இருக்கிறதுனாலதான் பாஜகவுக்கு ஒரு 1-ஆம் நம்பர் அடிமையாக இன்னைக்கு இந்த முதலமைச்சர் டம்மி முதலமைச்சர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்
1: All right, on that note, let's turn our attention to the other big story we're tracking this morning. Delhi's Public Works Department Minister Parvesh Singh Verma slapped a man on camera and that matter is now escalating. A complaint has now been filed against Parvesh Verma with the Aam Aadmi Party hitting the streets demanding action. While the PWD minister, I beg your pardon, has countered the allegations, Rahul Gandhi is now asserting that vote chori had made the ruling party fearless of elections and voters. This is Aam Aadmi Party workers have staged a protest in Tilak Nagar demanding an FIR and the arrest of Parvesh Verma. In fact, Aam Aadmi Party's Delhi unit president Saurabh Bhardwaj, he was detained by Delhi police amid this protest in Tilak Nagar, and the Aam Aadmi Party continues to demand action against Parvesh Verma. The man who got slapped, Sahib Singh, has filed a complaint against Parvesh Verma and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam, the poor quality of the roads that they had also ripped apart on camera. The complaint invokes four BNS sections, including hurt and intimidation. This as Rahul Gandhi has accused the BJP government of using force against people who question those in power, arguing that vote theft buys not just the result, but the arrogance that follows. Parvesh Verma says Rahul Gandhi doesn't know the facts. But the incident actually took place, as you know, when the minister was inspecting a newly laid road in the area. AAP MLA Janel Singh, who was present at the spot, questioned the quality of the work, pulled out sections of the road, portions, chunks of the road by hand. And a man standing nearby and recording the proceedings was then slapped by the PWD minister. Now, the Delhi BJP is defending Parvesh Verma and claiming that Sahib Singh was a habitual offender, flagging an earlier FIR against him. We've lined up crucial political reactions you cannot ignore. Listen in.
4: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया. जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी. उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया. मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है.
5: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है. उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे. जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है. वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाला, उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे. मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घुसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे.
6: उनको भी नुकसान हुआ है?
5: फ़ोन को भी नुकसान हुआ है. फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा. लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है.
6: कितने बजे हुई है घटना?
5: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है. हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे. 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है.
6: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
5: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब. पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी. पुलिस जो गुंडे होते हैं ना, गली के गुंडे होते हैं, नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो है, PWD विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये. और ये बोलते हैं जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है.
7: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई. सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी. जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई, तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे, और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, खींच के थप्पड़ मारा. मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया, जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते. मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा.
8: नहीं जाएंगे जब तक परवेश वर्मा पर FIR नहीं होगी. नहीं जाएंगे.
6: आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं. जनरल जी, जो पूरी घटना हुई है, ये कैसे हुई और उस समय की स्थिति क्या थी?
9: देखिए, ये जो सड़क बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के PWD विभाग द्वारा बनी है. 3 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई आपने 23 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च के सड़क बनाई है, और ये सड़क कारपेट की तरह उखड़ रही है बनने के बाद. कारपेट की तरह, ये देखो ठीक है. अब ये वीडियो पहले तो मेरी इंस्टा से डिलीट करवा दी गई, कई जगह वीडियो वायरल हो गई. तो मुझे आज संडे का दिन है, 1:15 पर परवेश वर्मा जी, जो दिल्ली सरकार के PWD मंत्री हैं, उनका कॉल आता है कि भाई मैं आपकी विधानसभा में आऊँ, तो वो सड़क का मेरे को इंस्पेक्शन करा दो. बहुत मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का शायद जमीर जाग गया, मैं यहाँ कुछ देर में पहुँच गया। तो मंत्री जी के साथ भाजपा के बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ उनके कार्यकर्ता थे, सब ने कैमरे ऑन कर रखे थे, लाइव चल रहा था सबका, मेरे को और अच्छा लगा। तो मंत्री जी कह रहे बताओ यार कहाँ सड़क टूटी है, सड़क तो हमारी बहुत बढ़िया बनी हुई है, हमने तो उसके सारे इंस्पेक्शन करा लिए, कोर कटिंग भी करवा ली, क्वालिटी टेस्टिंग भी होगी। तो मैंने कहा आओ जी, मैं इसी जगह पे उनको लेके आया और मैंने सड़क ऐसे, ये देखो अभी भी, मतलब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए, अभी भी सड़क उखड़ रही है। तो मैंने मंत्री जी को पूछा, मंत्री जी आप जवाब दो इस पे, आप पूछ रहे थे, मैंने दिखा दिया। अब होना ये चाहिए था कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से मंत्री जी को जवाब लेना चाहिए था। ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लातें मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
1: The big question is, of course, why did a serving minister, a PWD minister, respond physically to his citizens when the genuine road quality issues were being flagged? Anushka has been tracking the latest details for us. She joins us with the clarity we need currently. Anushka, to begin with, what is the status of Sahib Singh's complaint against Parvesh Verma?
10: Well, Parmeshwar, what we are given to understand is that the police have registered complaint based on the facts that both the parties have in fact provided. We have seen that Parvesh Verma had said that Sahib Singh was in fact abusing his family members, because of which he lost his cool and then he slapped him, and he was also obstructing the government's work of the road construction and the inspection for which Parvesh Verma had in fact come to this very place where we are standing at right now. Also, we have seen Sahib Singh, who has in fact gone on to say that he was merely doing a live video from the spot where Parvesh Verma was in fact standing, and also Jarnail Singh was questioning him about the quality of the work that was in fact being done by the PWD. We are showing you the visuals of the very road where Jarnail Singh was in fact standing, and he also pulled off the very road like a carpet, as he has in fact earlier also mentioned in his bite. We have seen that this is the very road from where Jarnail Singh picked up the very road that was in fact constructed here. He started questioning Parvesh Verma as to what the quality of the work was in fact being done on ground, after which we have seen Parvesh Verma, who was in fact going away from this very place, and then when the live video started happening, Parvesh Verma slapped Sahib Singh. We have seen that in this matter Delhi police have said that Sahib Singh also has a previous FIR against him, where he was he had in fact assaulted a MCD of a worker who was on a temporary worker in MCD at that time, and there was a case registered against him. There's a previous case registered against Sahib Singh, but we have heard the father of Sahib Singh also, who has said that he's just a student, he was studying and was in fact also working as the social media wing for Jarnail Singh. He came here and he was doing a live video, after which the PWD minister Parvesh Verma, when he reached here, when he was being questioned by Jarnail Singh, he lost his cool and not just slapped Sahib Singh but also kicked him and threw his phone forcefully on the road. And now we are seeing Delhi police are right now verifying the claims made by both the parties, by Parvesh Verma and also by Sahib Singh, who is the victim in this case, who was slapped by Parvesh Verma. We're also showing you the barricading that has in fact been placed here. We saw yesterday how the Aam Aadmi Party was in fact staging a protest demanding that justice be delivered, but we have seen that this whole issue has in fact unfolded yesterday evening. Over to you.
1: We'll of course revert to you for regular updates. Thanks so much for joining us this morning. Well, on that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking at the moment. The political fallout from the violence at Lovely Professional University is now escalating, with the BJP making a serious allegation that the unrest was politically orchestrated. BJP's Ravneet Singh Bittu has alleged that the violence at LPU was part of a conspiracy involving Aam Aadmi Party leaders Bhagwant Mann, Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. Now, he's named these three Aam Aadmi Party leaders. He's claimed that miscreants were sent into the university to create unrest and that the police response was deliberately lax. These are, of course, serious allegations coming in from the BJP, and at this point, they remain allegations. Ravneet Bittu has blamed Bhagwant Mann, Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. My colleague Pradeep is tracking the latest details for us. Pradeep, the BJP has now alleged that the Aam Aadmi Party leaders orchestrated this violence at Lavi Professional University. What does the police investigation currently establish about who was involved in the violence and how it started?
11: See, you rightly said a very serious allegations, the charges that has been leveled by the former Union Minister Ravneet Singh Pittu. He has said that the kind of a resounding response and enthusiasm that the people are giving to the Nasha Mukta Punjab Abhiyan that has been started by the BJP. Aam Aadmi Party is completely rattled. That's why they orchestrated this conspiracy. Basically, this was a diversionary tactic. They wanted to divert attention from allotment of the bungalow to the Delhi leader and also that Gayatri Bishnoi dispute that's going on. And he even went to the extent of saying that recently this person who is the owner of the university, LPU University, he was a member of the Rajya Sabha for Aam Aadmi Party in the month of April. He left Aam Aadmi Party, basically Ashok Mittal, to join BJP. So that's one of the reasons they want to, in fact, settle score with him. So they want to close this university. That's why they created a kind of an unrest. So far as the police is concerned, the police is right now saying that investigation in this regard is going on. They already said that they have made students also part of this investigation. They showed them the CCTV footage. They also took them to various hostels. They want to have proper transparency and accountability in the system. They want to make them also the part of the investigation. That's what police is claiming. But so far as the BJP is concerned, BJP is in fact also charging police of lax response that led these miscreants to take situation in their hand and create an unstable situation there inside the campus. So that's, there are very serious charges right now leveled against BJP by BJP against Aam Aadmi Party. So that's really the story right now, the political fallout of this violence right now at the lovely professional university.
1: As always, Pradeep, thanks so much for joining us with the latest. We will, of course, revert to you for regular updates on how this probe is progressing. Ravneet Singh Bittu has also linked the alleged conspiracy to the controversy surrounding government bungalows allotted to Delhi leaders, the Gayatri Bishnoi dispute and the departure of Ashok Mittal from the Aam Aadmi Party. What began with an allegation of sexual assault at Lavi Professional University has now become a full-blown law and order crisis. Protests over alleged sexual assault claims at LPU turned violent, with students vandalizing campus property, clashing with police and setting parts of the campus on fire. Amid this unrest, LPU has suspended regular classes for 10 days now, prompting students to head home from the campus. This as students had vandalized campus property, objects were set on fire, there were minor incidents of arson. The Jalandhar Phagwara highway that was blocked, and the confrontation with the police that escalated. Police say protesters pelted stones and attacked vehicles. Multiple police vehicles were set ablaze and personnel were injured. The Lavi Professional University Dean Saurabh Lakhanpal has now blamed anti-social elements for the vandalism and said the university suspects a conspiracy behind the escalation. Listen in.
12: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की, हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
13: मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
14: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
15: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
14: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
13: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सबके पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
16: देखिए, पहले जो इशू था कि हॉस्टल में कुछ गड़बड़ी है, वो सारी अफवाहें थी। एक एक हॉस्टल, आप भी साथ थे, सारे हॉस्टल चेक कर लिए गए हैं, कुछ भी नहीं है। अब ट्रैफिक भी खुल चुका है और अभी सारे स्थिति नॉर्मल में है, तो आगे बच्चों से बात करके बाकी भी रिजॉल्व हो जाएगा।
17: ट्रक में तकरीबन 2000 से ज्यादा फोर्स हमारी मौजूद है यहाँ पे और शांति व्यवस्था बिल्कुल बरकरार है और बहाल है। देखिए, अभी ये सिलसिला चल रहा है, अभी आपको स्थिति कंट्रोल में करने दीजिए। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ और पेरेंट्स के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि दे आर सपोज टू रिलैक्स, कि बिकॉज उनकी बच्चियां यहाँ पर हैं हॉस्टल्स में, तो वो इत्मीनान रखें कि कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, सभी महफूज है।
18: जो हमने 5 व्यक्ति लड़के पकड़े हैं, उनके पास एक दातर और वो जो वॉकी टॉकी सेट था वो रिकवर हुआ है, अभी आगे उसकी पूछताछ होगी। नहीं, अभी तो उनकी जांच हो रही है।
19: डिस्चार्ज पुलिस व्हीकल नरेट द स्टोरी ऑफ अनरेस्ट इनसाइड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस। डे बिफोर यस्टरडे प्रोटेस्ट वॉज ट्रिगर्ड बाय अनवेरिफाइड सोशल मीडिया रिपोर्ट अबाउट एलिज्ड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ one of the student inside the campus. Immediately after that, the agitated students, they came out of their classroom, they went on rampage, they vandalized the university, they broke glass panes, and then yesterday some of the students came out on national highway, they blocked a road. Police tried to disperse them. Some of the agitated students, they started pelting stones, they even hurled bottle. That was the time when police resorted to cane charging. And some students, they even burnt police vehicles, they did not even spare this motorbike. Police had to resort to cane charging to disperse those students. But now, things after 48 hours are limping back to normal. Heavy deployment of police is around LPO campus. Advisory has already been issued. Classwork has been suspended for 10 days and students had been asked to go back to their respective places with the consent of their parents. Those who have to stay back in hostel, the advisory has been issued that they should not amplify any unverified report appearing on social media. You can see how they tried to break the barrier that was raised by the police yesterday when they disrupted traffic, but now the traffic has been restored and things are limping back to normal. Yesterday, traffic here in this area had come to a screeching halt. So far as the police is concerned, already a fire has been lodged, SIT has been constituted to make the process transparent and accountable. Seen outside Lovely Professional University campus looks like a battleground. You can see there's a heavy deployment of police personnel trying to ensure that no law and order problem takes place. And area has been almost converted into fortress. Additional reinforcement has been called after yesterday's incident when some of the police vehicles were burnt by agitated students. And you can see many of the students have already packed their bags and they are leaving for their respective destination. Since yesterday, advisory has been issued by campus authorities. 10 days work has been suspended, so classroom will remain suspended for 10 days. That means the students are permitted to go back to their respective places following consent of their parents. Not only that, those who will stay back at campus, they had been asked not to indulge in any kind of provocative activity. And besides this, they have also been advised not to amplify any post appearing on social media, any unverified post appearing on social media. Ye campus 10 din ke liye band kar diya gaya hai. To kya kaha gaya aapse?
20: बस 10 दिन के लिए नोटिफिकेशन आई थी, 10 दिन के लिए बंद,
21: 10 दिन ऑफ है।
16: अच्छा, 10 दिन के लिए कैंपस बंद है। अब तो 10 दिन के बाद अब आप आएंगे यहाँ पे।
20: हाँ, 10 दिन।
16: और कोई एडवाइजरी भी इशू की गई है?
20: नहीं, और तो ये था कि सेफ एंड सिक्योर रहे, जो भी अंदर रहना चाहता है वो रूम में रहे, बस और कुछ भी नहीं।
16: और ये भी कहा गया कि अनवेरीफाइड कोई, जैसे कोई आप सोशल मीडिया पे आए वो उसको
20: कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया पे बिलीव करना है ही नहीं। और जो भी है रूम में रहें, जो रहना अंदर रहना चाहते हैं, बाकी जो घर जाना चाहते हैं वो चले जाएं सेफली।
16: तो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी हुई, आप उससे सेटिस्फाइड हैं?
22: यस,
20: हाँ सर, सेटिस्फाइड है, कोई इशू नहीं है उसमें, नहीं सर।
16: आप लोग भी अपने घरों में जा रहे हैं अब?
23: yes,
16: ये 10 दिन के लिए कैंपस बंद रहेगा।
23: हाँ जी।
16: तो अपने पेरेंट्स वगैरह से बात हुई, कोई लेने आ रहा है?
23: नहीं, हम खुद जा रहे हैं।
16: आप खुद ही जा रहे हैं? जो ये 2 दिन में हुआ, क्या लगता है आपको सारा ये जो हादसा वगैरह हुआ?
23: कुछ कह नहीं सकते अभी,
16: कुछ आइडिया नहीं है।
1: There is an important change in the investigation you have to note. Kapurthala police have registered an FIR under the rape provision of the BNS following a complaint by hostel students, and an SIT has been formed to investigate what actually happened. Police are also examining CCTV footage and the circumstances surrounding the allegation. So we have to be very careful about what we know and crucially what we don't at this stage. The LPU has refuted the allegations, terming them baseless and rumor-driven. The unverified allegation, however, set in motion one of the most unprecedented protests on the Lovely Professional University campus, with students laying siege to the premises on Saturday night, taking to the streets at 4 a.m. on Sunday, blocking the NH44, which is basically the Jalandhar-Fagwara highway. Take a look at this detailed report.
0: Lovely Professional University in Phagwara became the center of a massive student protest early Sunday morning. The unrest began around the girls' hostel after reports circulated on social media alleging that a female student has been sexually assaulted on campus by an outsider. Students gathered, demanding answers from the university administration. But the situation soon escalated.
2: सबसे पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी पुलिस को या प्रशासन को इन केसों में करनी चाहिए तो वो तो पहले सबसे पहले वो इनको करानी चाहिए
21: हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था वार्डन सामने आके वीडियो बना के कहते हैं आप वापस चले जाओ नहीं तो आपकी वीडियो बना के हम UMC लगा देंगे आपके ऊपर हमें इस चीज़ की धमकी दी गई थी हमें इसलिए भगाया गया था
0: द नाइट प्रोग्रेस्ड द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट Visuals from inside the campus showed shattered window panes, damaged flower pots and vandalized university property. Students were seen moving through the campus as the unrest spreads. Then came the flames. Parts of the campus property were set on fire with smoke and flames visible in videos emerging from the university. The scale of the violence grew as protesters moved towards university gates. Some of the most striking visuals came from the campus's military exhibits. One of the students was seen climbing onto an Indian Air Force MiG-23 aircraft, while around 10 students were seen on top of a military tank installed on the campus. Other visuals showed how students climbed over campus fixtures and structures as protest continued. The protesters then moved beyond the campus. Students reached the university gates and blocked the Jalandhar-Fagwara National Highway. Police deployed forces from across the Jalandhar range as the situation unfolded. The situation refused to die down. And then later on Sunday night, the violence escalated yet again. Police vehicles were attacked and the police claims that stones were also pelted on the police force.
22: All the students, all the protesters, they started stone pelting and the police forced to go back and a lot of police officials, they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters.
0: For now, the question remains unanswered. What exactly happened inside the hostel? The alleged assault is under investigation. The university disputes the claims circulating online. And the violence that followed has left extensive damage across the campus.
12: देखिए स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की वो CCTV फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं
0: What began with demands for answers has now become a wider question of student safety, institutional response, and how quickly unverified claims can turn into campus-wide unrest.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: Udayanidhi's talent takes a swipe at Vijay with an Om Kali Jai Kali remark and fugitive jibes, while Vijay calls the DMK an evil force. The BJP is now attacking Udayanidhi's talent over his reference. Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay will launch the Thai Maman Thangamodiram Thittam, under which the government will provide a 1 gram 22 carat gold ring to babies born in government hospitals. The family of a 22-year-old student who was found dead in a homestay on the outskirts of Assam's Guwahati has alleged she was gang raped before she was killed. The student died after she was found in a critical condition. British police have arrested 5 men near RAF Fairford on suspicion of preparing a terrorist act after explosives were reportedly found in vehicles near the USU's base. Donald Trump says the suspects were looking to do big damage, as authorities are also investigating a possible Iran link. Well, a big focus currently, what began with an allegation of sexual assault at Lovely Professional University has now become a full-blown law and order crisis. Protests over alleged sexual assault claims at LPU have turned violent. Students have vandalized campus property. They've clashed with police. They've set parts of the campus on fire as well. And amid this unrest, LPU has now suspended regular classes for the next 10 days. It's prompted students to head home from the campus. This after students had vandalized campus property, objects were set on fire, the Jalandhar-Fagwara highway was blocked, and the confrontation with the police escalated sharply. Police have said on record that protesters pelted stones and attacked vehicles. Multiple police vehicles were set ablaze and personnel were also injured. The LPU Dean Saurabh Lakhanpal has blamed anti-social elements for all this vandalism and said the university suspects a conspiracy behind this escalation. But there's an important change in the investigation you have to note. Kapurthala police have now registered an FIR under the rape provision of the BNS following a complaint by hostel students. And an SIT has also been formed to investigate what actually happened. Police, as we speak, are examining CCTV footage and the circumstances surrounding the allegation. We've got crucial reactions lined up for you. We have to be careful about what we know so far and what we don't. Just listen into these reactions.
1: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की, हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
2: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सबके पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
5: देखो, जो कल रात से जो सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है वो आप देख ही रहे हो. और यूनिवर्सिटी जो है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने स्टूडेंट्स को 10 दिन की छुट्टी कर दी है. तो इसलिए रात के स्टूडेंट्स जो अभी जा रहे हैं, अभी आप भी देख रहे हो, अभी भी जा रहे हैं. तो सिचुएशन पीसफुल है, ऐसी कोई बात नहीं है. चारों तरफ जो यूनिवर्सिटी के जो गेट हैं उनके ऊपर हमने अपनी पुलिस लार्ज स्केल पर डिप्लॉय कर रखी है.
6: वो जो हमने 5 व्यक्ति लड़के पकड़े हैं, उनके पास एक दातर और वो जो वॉकी टॉकी सेट था वो रिकवर हुआ है. अभी आगे उसकी पूछताछ होगी. अभी तो उनकी जाँच हो रही है.
7: The discharged police vehicle narrates the story of unrest inside Lovely Professional University campus. Day before yesterday, protests was triggered by unverified social media report about alleged sexual assault of one of the students inside the campus. Immediately after that, the agitated students, they came out of their classroom, they went on rampage, they vandalized the university, they broke glass panes, and then yesterday, some of the students came out on National Highway, they blocked a road. Police tried to disperse them. Some of the agitated students, they started pelting stones, they even hurled bottle. That was the time when police resorted to cane charging. And some students, they even burnt police vehicles, they did not even spare this motorbike. Police had to resort to cane charging to disperse those students. But now, things after 48 hours are limping back to normal. Heavy deployment of police is around LPO campus. Advisory has already been issued. Classwork has been suspended for 10 days and students had been asked to go back to their respective places with the consent of their parents. Those who have to stay back in hostel, the advisory has been issued that they should not amplify any unverified report appearing on social media. You can see how they tried to break the barrier that was raised by the police yesterday when they disrupted traffic, but now the traffic has been restored and things are limping back to normal. Yesterday, traffic here in this area had come to a screeching halt. So far as the police is concerned, already a fire has been lodged, SIT has been constituted to make the process transparent and accountable. Scene outside Lovely Professional University campus looks like a battleground. You can see there's a heavy deployment of police personnel trying to ensure that no law and order problem takes place. And area has been almost converted into fortress. Additional reinforcement has been called after yesterday's incident when some of the police vehicles were burnt by agitated students. And you can see many of the students have already packed their bags and they're leaving for their respective destination. Since yesterday, advisory has been issued by campus authorities. 10 days work has been suspended. So classroom will remain suspended for 10 days. That means the students are permitted to go back to their respective places following consent of their parents. Not only that, those who will stay back at campus, they had been asked not to indulge in any kind of provocative activity. And besides this, they have also been advised not to amplify any post appearing on social media, any unverified post appearing on social media. Ye campus 10 din ke liye band kar diya gaya hai. To kya kaha gaya aapse?
8: बस 10 दिन के लिए नोटिफिकेशन आई थी 10 दिन के लिए बंद
9: 10 दिन ऑफ है
7: अच्छा 10 दिन के लिए कैंपस बंद है अब तो 10 दिन के बाद अब आप आएंगे यहाँ पे और कोई एडवाइजरी भी इशू की गई है
8: नहीं और तो ये था कि सेफ एंड सिक्योर रहे जो भी अंदर रहना चाहता है वो रूम में रहे बस और कुछ भी नहीं
7: और ये भी कहा गया कि अनवेरीफाइड कोई जैसे कोई आप सोशल मीडिया पे आए वो उसको
8: कुछ भी नहीं सोशल मीडिया पे बिलीव करना है ही नहीं और जो भी है रूम में रहें जो रहना अंदर रहना चाहते हैं बाकी जो घर जाना चाहते हैं वो चले जाएं सेफली
7: तो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी हुई आप उससे सेटिस्फाइड हैं
8: यस हाँ सर सेटिस्फाइड है कोई इशू नहीं है उसमें नहीं सर
7: आप लोग भी अपने घरों में जा रहे हैं अब समय ये 10 दिन के लिए कैंपस बंद रहेगा तो अपने पेरेंट्स वगैरह से बात हुई है कोई लेने आ रहा है
10: नहीं हम खुद जा रहे हैं
7: आप खुद ही जा रहे हैं जो ये दो दिन में हुआ क्या लगता है आपको सारा ये जो हादसा वगैरह हुआ
10: कुछ कह नहीं सकते अभी
7: कुछ आइडिया नहीं है
0: Well, more than 2,000 police personnel have now been deployed at the Lovely Professional University in Fagwara, and several political leaders have also waded into developments at LPU. Owned by BJP Rajya Sabha MP Ashok Kumar Mittal, with the upcoming Punjab Assembly elections in mind. Ravneet Singh Bittu of the BJP claimed that the ruling Aam Aadmi Party was badly rattled by the resounding enthusiasm and overwhelming support that Punjabis are extending to the BJP's drug-free campaign. We've also got a reaction from the Congress lined up for you. Listen in to what the BJP and the Congress are saying regarding the matter.
11: Jalandhar University में जो घटना हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा देखने को मिल रहा है, पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया है। बच्चों ने दो प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है पर जो लोगों को आने जाने में जो पथराव में लोगों को चोट लग सकती है या कई तोड़फोड़ हुई है ये गलत है हर व्यक्ति को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है अभी बच्चों को शांति से रहना चाहिए
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आगजनी हो रही है, दंगे भड़काए जा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। मैं समझ रहा हूं कि चाहे केंद्र सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, ये दोनों फेल हुई हैं और ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरी तौर पे दखल अंदाजी करें। और मेरा सीधा इल्जाम है कि ये जो दंगे भड़काने का काम है, ये केंद्र और पंजाब सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, ये दोनों फेल हुए हैं।
0: Well, LPU has refuted the allegations, terming them baseless and rumor-driven. But Pradeep has been tracking all the finer developments for us. He joins us live at the moment. Pradeep, can you clarify? There's an important change in the investigation, right? With the Kapurthala police now registering an FIR against unknown person in connection with this alleged rape at the LPU campus following a complaint by hostel students, we're given to understand. Also, reportedly, the case has been registered under Section 64, which is rape of the BNS at the Satnampura police station?
12: Yes, Parmeshwar, you are absolutely right. Your fire has already been lodged in this regard and SIT has been constituted. That SIT is going to investigate the matter. And what actually has happened, the students had been levelling several charges. So to ensure that there is a proper transparency and to satisfy the students, the five-member student team was also made the part of investigation. They were made to go through different hostels and also made to review CCTV footage. What the police is saying, so far, nothing objectionable has been found. So far as LPU authorities are concerned, they are saying this is a fabricated case, some antisocial element. They were trying to, in fact, destabilize situation, and this was a conspiracy hatched by them. And already we have seen the politics over this issue has already started. We have heard that how Union Minister, former Union Minister Ravneet Bittu, he said these are diversionary tactics. Basically, there had been several charges against the Aam Aadmi Party of allotting bungalows to our leaders from Delhi. And that's why they are trying to divert attention, and they are saying that also they are completely rattled because of the response and the enthusiasm that Nasha Mukt Punjab campaign that has been initiated by BJP earlier this month has initiated. So because of that also they are completely rattled. They want to divert attention. And the second important point what they are saying is that if you look at the owner of this university, Ashok Mittal, he was earlier a part of the Aam Aadmi Party. It was in the month of April he left Aam Aadmi Party and he joined BJP. And that's why they are just trying to settle score with this man. They want university to be closed. That's why some of the antisocial elements were involved to destabilize situation. But so far as the Congress is concerned, Congress is trying to put blame on both BJP as well as Aam Aadmi Party of not handling situation properly. They are saying that they are both hand in cloud just ahead of election. They are trying to create a situation where they want to destabilize atmosphere. That's what they are saying. But if so far as the investigation part is concerned, the police is saying they are properly looking into the matter. But yes, advisory has already been issued. They are saying that some unverified post triggered this kind of a protest that led the students to come out on the street. And finally, that led to the burning of some of the police vehicle. And they are saying that we are looking into all the aspects. There will be scientific investigation to ensure that their justice is done so that in future no such incidents happen. And what really led to this unverified post triggering protest, they will also investigate. Some people have already been picked up, they are detained and they are being questioned.
0: As always, Pradeep, thanks so much for joining us with the latest. We'll of course revert to you for regular updates in Phagwara. On that note, let's turn our attention now to the national capital. Delhi's Public Works Department Minister Parvesh Verma slapped a man on camera, and that matter is now escalating. A complaint has been filed against Parvesh Verma, with the Aam Aadmi Party also hitting the streets demanding action. The PWD minister has countered the allegations, but Rahul Gandhi is asserting that vote chori had made the ruling party fearless of elections and fearless of voters. This as the Aam Aadmi Party workers have staged a protest in Tilak Nagar demanding an FIR and the arrest of Parvesh Verma. In fact, you must note that AAP's Delhi unit president Saurabh Bhardwaj was detained by Delhi police amid the protest in Tilak Nagar. But the AAP continues to demand action against Parvesh Verma. Now, the man who got slapped, Sahib Singh, has filed a complaint against the PWD minister and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam. The complainant invokes four BNS sections, including hurt and intimidation. This as Congress's Rahul Gandhi has accused the BJP government of using force against people who question those in power, arguing that vote theft buys not just the result, but the arrogance that follows. Parvesh Verma says Rahul Gandhi doesn't know the facts, but the incident took place when the minister was inspecting a newly laid road in the area, and Aam Aadmi Party MLA Janel Singh, who was present at the spot, questioned the quality of the work and actually pulled out portions, as in chunks of the road surface, by hand. A man standing nearby recording the proceedings was then slapped by Parvesh Verma. And now the Delhi BJP is defending him, claiming that Sahib Singh was a habitual offender, flagging an earlier FIR against him too. We've got political reactions that you need to listen to. Listen in.
13: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
14: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना का घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने है कि उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे।
15: उनको भी नुकसान हुआ है?
14: फ़ोन को भी नुकसान हुआ है। फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा, लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है।
15: कितने बजे हुई है घटना?
14: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है। हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे। 2:30 के करीब ये घटना हुई है।
15: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
14: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी। पुलिस जो गुंडे होते हैं ना, गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो हैं, PWD विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये। और ये बोलते हैं जैन के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है।
16: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे, और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
17: हम लोग नहीं जाएंगे जब तक परवेश वर्मा पर FIR नहीं होगी। हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
15: आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जनरल जी, जो पूरी घटना हुई है, ये कैसे हुई और उस समय की स्थिति क्या थी?
18: देखिए, ये जो सड़क बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के PWD विभाग द्वारा बनी है। 3 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई आपने 23 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च के सड़क बनाई है, और ये सड़क कारपेट की तरह उखड़ रही है बनने के बाद, कारपेट की तरह। ये देखो ठीक है। अब ये वीडियो पहले तो मेरी इंस्टा से डिलीट करवा दी गई, कई जगह वीडियो वायरल हो गई। तो मुझे आज संडे का दिन है, 1:15 पर परवेश वर्मा जी जो दिल्ली सरकार के PWD मंत्री हैं, उनका कॉल आता है कि भाई मैं आपकी विधानसभा में आऊँ तो वो सड़क का मेरे को इंस्पेक्शन करा दो। बहुत मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार, PWD मंत्री जी का शायद जमीर जाग गया। मैं यहाँ कुछ देर में पहुँच गया तो मंत्री जी के साथ भाजपा के बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ उनके कार्यकर्ता थे, सब ने कैमरे ऑन कर रखे थे, लाइव चल रहा था सबका, मेरे को और अच्छा लगा। तो मंत्री जी कह रहे, बताओ यार कहाँ सड़क टूटी है, सड़क तो हमारी बहुत बढ़िया बनी हुई है, हमने तो उसके सारे इंस्पेक्शन करा लिए, कोर कटिंग भी करवा ली, क्वालिटी टेस्टिंग भी होगी। तो मैंने कहा आओ जी, मैं इसी जगह पे उनको लेके आया और मैंने सड़क ऐसे, ये देखो अभी भी, मतलब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए, अभी भी सड़क उखड़ रही है। तो मैंने मंत्री जी को पूछा, मंत्री जी आप जवाब दो इस पर, आप पूछ रहे थे, मैंने दिखा दिया। अब होना ये चाहिए था कि PWD के इंजीनियर से मंत्री जी को जवाब लेना चाहिए था। ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, जमीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लातें मारी और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को कर

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: A healthier India doesn't happen in a day.
2: It starts with the health choices that we make every day.
3: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
2: यू वॉच अस व्यूअर यू ट्रस्ट अस एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू वोट फॉर एनडीटीवी एट द आईटीए अवार्ड्स 2026 यू हैव गॉट दैट पावर Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters.
3: A healthier India doesn't happen in a day.
4: It starts with the health choices that we make every day.
5: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे
6: और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार
3: बिकॉज बनेगा स्वस्थ इंडिया इज जस्ट नॉट अबाउट लिविंग लॉन्गर
2: इट्स अबाउट लिविंग हेल्दियर फीलिंग अलाइव एंड मेकिंग एवरीडे काउंट
6: वन इन्फॉर्म्ड चॉइस और एक हेल्दियर एक्शन
3: गिविंग बेटर हेल्थ इन मोर हैंड्स एवरीडे

0: यह चौड़ीकरण का काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि सभी आम जनता भी उसमें सहभागी बनकर और सहयोगी बनकर इस, क्योंकि उज्जैन हमारी संस्कृति का प्रतीक है, महाकाल की नगरी है, हमारी परंपरा का प्रतीक है, पूरा देश वहां देखेगा तो एक ऐसा संदेश देश के अंदर जाना चाहिए, जब पूरा देश वहां आएगा तो लगेगा देश नहीं पूरे विश्व के लोग आते हैं, सबसे बड़ा कुंभ यहां पर आयोजित होता है। तो मैं आप सबसे भी अपील भी यही करता हूं, जितने भी जो आ रहे हैं, कई लोगों ने स्वेच्छा से भी ये काम दिया, क्योंकि राष्ट्र का काम है ये, धर्म का काम है ये, हमारे उज्जैन विकास का काम है, उसमें सब सहभागी बने, ऐसी सबसे अपेक्षा।
1: ये काम पूरा नहीं हो सकता था विदाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच, जहाँ पर मॉस्क है उसको अगर हम छोड़ सकते थे, उसको अनटच रख सकते थे, क्या जरूरी था कि इस मॉस्क की डेमोलिशन जरूरी थी?
0: देखिए, स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनता है, बहुत इंजीनियर और बहुत प्रॉपर वे में वो काम होता है, और इसमें विकास के काम है, और ये तो आज का नहीं वर्षों का नियम है कि कोई भी विकास के काम में कुछ भी आड़े नहीं आएगा, और जो आड़े आएगा उसको वहां पर ठीक करने का काम किया जाएगा।
1: तो क्या वही रूल आप फॉलो करते?
0: वही रूल, अरे रूल सबके लिए एक सा होता है, ये भारत भारतीयता के हिसाब से माननीय है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अब सही दिशा पकड़ चुका है। हमने देखा काशी बनारस का भी जब कॉरिडोर बना तो कितने प्रकार की बातें वहां पर हुई।
1: सर,
0: थी
1: जो 272 स्ट्रक्चर्स आपने मार्क करे हैं कि इनमें डेमोलिशन करेंगे, उनमें से कोई मंदिर भी इन्वॉल्व है या कोई हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है?
0: ये डॉक्टर मोहन यादव जी शुद्ध सनातन नहीं, उनका खुद का घर आया है, इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये विकास की बात है, और विकास में कोई भी रोड़ा ना बने ये हम सबसे अपील भी कर रहे हैं।
1: Right, thank you so much, sir, for speaking with us here on NDTV. So we have a BJP reaction coming about. Darshan Singh Chaudhary, MP of BJP. We also have Shivendra Parmar, my colleague, getting us a ground report from how this situation has erupted from yesterday. There were people of the Muslim community who had gathered there in order to protect the mosque from this demolition drive that has been sanctioned by the Chief Minister, Mohan Yadav. And Mohan Yadav, they're saying that, even he has gone ahead and demolished part of his own childhood home that carried personal significance but was necessary for the larger cause. Let's get you this ground report with my colleague Shivendra Parmar.
2: उज्जैन में पथराव के बाद अब पुलिस प्रशासन लगातार जो है उन लोगों को समझाते हुए नजर आ रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दूर दूर तक जो है उन्हें पुलिस जो है समझाते हुए नजर आ रही है, और इस वक्त जो है फिलहाल पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और सभी लोग जो है जो दंगाई है, जो उपद्रवी है उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि यही वो रोड था जहाँ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी, और आप देखेंगे मेरे पीछे कि यहाँ पर उस रोड पर फिलहाल जो है कहीं ना कहीं चौड़ीकरण का काम चल रहा था। ऐसे में देखे आप कितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर मौजूद थे, और उसके बाद इन पत्थरों के द्वारा जो है उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी, और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी आने के बाद अब यहाँ पर पुलिस आगे की ओर बढ़ी है और उन लोगों को समझाते हुए कह रही कि आप कहीं ना कहीं सब चीज़ें सहमति से हो रही है तो आप इन चीज़ों को बिगाड़े नहीं, और हम आप ही के लिए यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम बड़े पुलिस अधिकारी इस वक्त मौजूद है और वे समझाते हुए नजर आ रहे हैं, और चारों तरफ जो है पुलिस यहाँ पर तैनात है। और इस वक्त जो है उज्जैन के शाही मस्जिद को लेकर जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थिति बनी है वो जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही है। उज्जैन में पथराव के बाद
1: partial removal taking place there at the Shahi mosque. This is in Ujjain, and saying that this is not a demolition of the entire mosque is what the Madhya Pradesh government has said in its defense. Ujjain Municipal Corporation, in fact, has ordered the removal of the portion of the Shahi Masjid that falls within a planned 15-meter road widening with the move linked to the Ujjain development plan for 2035 and the preparation for the Kumbh Mela in 2028. Let's just switch tracks and get you more news coming in. And this is coming out of the state of, let's just talk about, in fact, Vijay. This is coming out of Tamil Nadu with the chief minister there, who is set to launch the new scheme, in which basically he's offering a 1 gram

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम आ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाहें उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
1: देखिए, सिंहस्थ 2028 के जो कार्य हैं बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं और जितना बड़ा आयोजन है देश विदेश से जो है श्रद्धालु आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आ रही है कि सभी लोग स्वयं इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे धर्म हों, समुदाय के लोग हों, और उसी के क्रम में बड़ी संख्या में जो है ये कार्य हुए हैं। आज इसी के क्रम में छत्री चौक पर जो धर्मस्थल है उसको हटाने का कार्य इनके समाजजन स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें और धर्मस्थल को हटाने का कार्य इनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
2: All right, we're joined on the phone line by Shankar Lalwani, BJP MP from Indore. Sir, your reaction to these developments, some agreement arrived at between mosque authorities as well as the district administration. However, once again, unrest taking place. Phir se wahan par unrest ho raha hai, chal raha hai wahan Ujjain mein. Agreement, samjhota bhi ho gaya hai dono side se.
3: देखिए, आप ये बात सही है कि कल रात को ही बात हो गई थी और धर्म के सभी नेताओं ने सहमति जताई थी और सहमति के आधार पे कार्रवाई चल रही थी और कुछ खुरापाती तत्व हैं जो अफवाह फैला रहे हैं और न्यूसेंस कर रहे हैं, उसके कारण ऐसी स्थिति हुई। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपना मकान तोड़ने के लिए शुभारंभ किया है, खुद का मकान जो पुराना ऐतिहासिक है, तो सबने मिल के तय किया कि सब बिना जाति धर्म के सब जो सीएस की तैयारी में रोड ब्रांडिंग हो रहा है उसमें सभी चीजें जितनी रिक्वायरमेंट है मास्टर प्लान के अनुसार उतना रोड ब्रांडिंग करेंगे। तो ये न्यूसेंस नहीं करना चाहिए, दुखद होना नहीं चाहिए।
2: जी, कांग्रेस ने हाउएवर बोला कि ये 600 साल पुराना मॉस्क है, ऑब्वियसली जो एरिया में है टेंशन है और डिस्ट्रस्ट भी है, शक का माहौल भी है। क्लियरली सिटी काजी ने भी बोला है इसके बारे में, बट अभी टेंशन वहां पर चली रही है।
3: कांग्रेस तो ऐसे समय राजनीति करती है, मुझे लगता है विकास में कभी भी राजनीति नहीं होना चाहिए, हमें विकास में सबको साथ में चलना चाहिए। इस प्रकार की बातें कांग्रेस को बोलनी चाहिए, जो सबने बैठ के तय किया प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने और धार्मिक नेताओं ने, उस अनुसार काम होना चाहिए।
2: अब क्या करने वाला है इस एरिया में लोगों को बताने के लिए कि वो समझौता हो चुका है, किसी तरह के स्टेप्स लेने वाले हैं?
3: जिला प्रशासन ने अनाउंस किया है, उस क्षेत्र में जाके खुद डीएम ने और कमिश्नर ने खुद जाके अनाउंस किया कि धार्मिक नेताओं ने इसमें सहमति दी और सहमति के आधार पे हम काम कर रहे हैं, आगे बिना सहमति से कुछ नहीं कर रहे।
2: और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो देयर यू हैव द बीजेपी एमपी ऑफ इंदौर स्पीकिंग टू एनडीटीवी सेइंग दैट दिस हैज बीन एन अग्रीमेंट हैज बीन अराइव्ड एट, दैट देयर आर एफर्ट्स बीइंग मेड टू इन्फॉर्म द पीपल ऑन द ग्राउंड, आल्सो हिटिंग आउट एट द कांग्रेस सेइंग दैट दे आर पॉलिटिसाइजिंग द सिचुएशन। लेट्स जस्ट लिसन इन टू व्हाट द उज्जैन डीएम हैड टू से ऑन द मॉस्क डेमोलिशन एज वेल एज द अग्रीमेंट दैट हैज बीन अराइव्ड एट।
1: देखिए, सिंहस्थ 2028 के जो कार्य हैं बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं और जितना बड़ा आयोजन है देश विदेश से जो है श्रद्धालु आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आ रही है कि सभी लोग स्वयं इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे धर्म हों, समुदाय के लोग हों, और उसी के क्रम में बड़ी संख्या में जो है ये कार्य हुए हैं। आज इसी के क्रम में छत्री चौक पर जो धर्मस्थल है उसको हटाने का कार्य इनके समाजजन स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें और धर्मस्थल को हटाने का कार्य इनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
2: Well, let's go across to our reporters now, Tanushree and Anurag joining us for the very latest. Anurag, tell us about this whole road widening. It is being done ahead of a religious, gathering that's going to take place in 2028. Clearly, a lot of distrust as well in this area. However, an agreement has been arrived at.
4: Yes, Gargi, during the last Singhas, around 7 crore pilgrims, they arrived in Ujjain, but this time the administration is expecting, that around 30 crore pilgrims will arrive in Ujjain. And because of that, many developmental projects, are there in and around Ujjain, including road widening projects in the pilgrim city of Ujjain, which is among the Dwadash Jyotirlingas of Lord Shiva. And because of this project, around 10 temples were also moved from that particular stretch. But in the night at around 4 a.m. early in the morning, an agreement was reached between the Muslim community members, the Imam of the Shahi Masjid, as well as the city administration. But again in the morning, many people gathered in the area. They started stone pelting, and then police, responded by lathi charge and tear gas shells. Again, some miscreants, they started stone pelting, in which few police personnel were also got injured, and the lathi charge, few protesters also got injured. And again, the Shahar Qazi, as well as the city district magistrate, they are appealing for peace. They're saying that don't believe in rumors. An agreement has been reached, and they're acting accordingly, because a petition was also dismissed by the Indore High Court, and again an appeal is pending before the division bench of the High Court.
2: Right, Anurag, but clearly there's a lot of distrust on the ground, as you was informing us that there was an agreement that was arrived at after negotiations overnight at around 4 a.m. We'll continue to monitor the situation, but once again, as you can see, there violence has flared, there's unrest rather has flared there in Ujjain over this particular issue. Efforts are being made to spread the news that an agreement has been arrived at. Well, moving on to news now from Punjab, where at the lovely professional university, once again, violence broke out overnight. This is the second time in 24 hours that there was violence at LPU. And this is, remember, over rumors of a rape that took place on the campus. And there you can see again, once again, there was, arson as well that took place, and damage to the university, as well as reports of cops being injured. So once again, vandalism taking place, campus, parts of the campus set ablaze, vehicles torched as well. Now, many of the students are leaving the university. The police were deployed in large numbers to bring the situation under control. And amid the unrest, LPU suspended regular classes for 10 days, with a large number of students packing their bags and heading home. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has ordered strict action against those responsible for the LPU violence. And after the Chief Minister's directive, the DGP visited the spot to assess the situation. On the other hand, LPU Dean Saurabh Lakhanpal has blamed anti-social elements, saying that the university suspects a conspiracy against it.
5: Discharged police vehicle narrates the story of unrest inside lovely professional university campus. Day before yesterday, protests was triggered by unverified social media report about alleged sexual assault of one of the students inside the campus. Immediately after that, the agitated students, they came out of their classroom, they went on rampage, they vandalized the university, they broke glass panes, and then yesterday, some of the students came out on National Highway, they blocked a road. Police tried to disperse them. Some of the agitated students, they started pelting stones, they even hurled bottle. That was the time when police resorted to cane charging. And some students, they even burnt police vehicles. They did not even spare this motorbike. Police had to resort to cane charging to disperse those students. But now things after 48 hours are limping back to normal. Heavy deployment of police is around LPU campus. Advisory has already been issued. Classwork has been suspended for 10 days, and students had been asked to go back to their respective places with the consent of their parents. Those who have to stay back in hostel, the advisory has been issued that they should not amplify any unverified report appearing on social media. You can see how they tried to break the barrier that was raised by the police yesterday when they disrupted traffic. But now the traffic has been restored and things are limping back to normal. Yesterday, traffic here in this area had come to a screeching halt. So far as the police is concerned, already a fire has been lodged. SIT has been constituted to make the process transparent and accountable. Seen outside Lovely Professional University campus looks like a battleground. You can see there's a heavy deployment of police personnel trying to ensure that no law and order problem takes place. And area has been almost converted into fortress. Additional reinforcement has been called after yesterday's incident when some of the police vehicles were burnt by agitated students. And you

0: can see many of the students have already packed their bags and they are leaving for their respective destination. Since yesterday, advisory has been issued by campus authorities. 10 days work has been suspended, so classroom will remain suspended for 10 days. That means the students are permitted to go back to their respective places following consent of their parents. Not only that, those who will stay back at campus, they had been asked not to indulge in any kind of provocative activity. And besides this, they have also been advised not to amplify any post appearing on social media, any unverified post appearing on social media. Ye campus 10 din ke liye band kar diya gaya hai. To kya kaha gaya aapse?
1: बस 10 दिन के लिए नोटिफिकेशन आई थी 10 दिन के लिए बंद
2: 10 दिन ऑफ है
0: अच्छा 10 दिन के लिए कैंपस बंद है
1: हां
0: अब तो 10 दिन के बाद अब आप आएंगे यहां पे
1: हां 10 दिन
0: और कोई एडवाइजरी भी इशू की गई है
1: नहीं और तो ये था कि सेफ एंड सिक्योर रहे जो भी अंदर रहना चाहता है वो रूम में रहे बस और कुछ भी नहीं
0: और ये भी कहा गया कि अनवेरीफाइड कोई जैसे कोई आप सोशल मीडिया पे आए वो उसको
1: कुछ भी नहीं सोशल मीडिया पे बिलीव करना है ही नहीं और जो भी है रूम में रहें जो रहना अंदर रहना चाहते हैं बाकी जो घर जाना चाहते हैं वो चले जाएं सेफली
0: तो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी हुई आप उससे सेटिस्फाइड हैं
3: यस
1: हां सर सेटिस्फाइड है कोई इशू नहीं है उसमें नहीं सर
0: आप लोग भी अपने घरों में जा रहे हैं अब समय ये 10 दिन के लिए कैंपस बंद रहेगा
3: हां जी
0: तो अपने पेरेंट्स वगैरह से बात हुई है कोई लेने आ रहा है
3: नहीं हम खुद जा रहे हैं
0: आप खुद ही जा रहे हैं जो ये 2 दिन में हुआ क्या लगता है आपको सारा ये जो हादसा वगैरह हुआ
3: कुछ कह नहीं सकते अभी
0: कुछ आईडिया नहीं है
4: कल यह सारा दिन इंगेजमेंट जो सा चलता रहा क्योंकि साढ़े ऑफिसर्स ने व्यू लिया सीगा कि सिंस देर वॉज सम प्रोवोकेशन उस तो बाद एक्शन होया सी ते असी मिनिमम फोर्स यूज़ करांगे तो अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन वॉज टेकन नॉट टू यूज़ फोर्स ऑन द स्टूडेंट्स एंड सिंस देर वेर ग्रीवियंसिस अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स वर मेड टू सॉर्ट आउट द ग्रीवियंसिस थ्रू डिस्कशंस तो एक बड़े ओपन माइंड नाल ओपन तरीके नाल स्टूडेंट्स नाल गलबात करके इस नू वर्चुअली वी वर एबल टू सॉल्व द इशू यस्टरडे कि जड़ा इंसीडेंट होया सी उस बारे FIR दर्ज की गई तो FIR दर्ज करने तो बाद एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिड़ी उस नू काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इंसीडेंट की जाऊगी
5: देखिए स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की वो CCTV फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं
6: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया
7: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है
8: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे हम अब लोग हमें परेशान मत करेंगे
7: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे
6: इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है धन्यवाद
9: Well, let's go across to Pradeep Datta now for more on this entire story. And Pradeep, there's so much confusion in you know, what is happening at LPU. There's been violence breaking out twice and very horrific violence with arson as well. Also, a controversy over these students that were featured in the video by the professional university authorities. They've come out and said that they were coerced. It was used without their consent. So what is the situation on the ground right now? Students have left. The college is closed for 10 days.
0: Yes, if you look at the situation on the ground right now, the things are limping back to normalcy. But yes, an advisory has been issued. Already there has been, the classwork has been suspended for about 10 days. The students had been asked to go to their respective places with the consent of the parents. And those who are going to stay back in the campus, they had been asked not to indulge in any kind of provocation and not to amplify any of those unverified mail or any unverified the messages they are getting on social media. And the third important thing is that the investigation right now is going on.

0: FIR has already been lodged. Director General of Police was here inside the campus. He reviewed the situation on the ground, interacted with the senior officers, and he said that they are looking into the matter. They will try to look into all the aspects, and even the conspiracy theory also, and everything will be looked into, because special investigation team has already been constituted that is looking into all the aspects. So they said that they try to use the minimum force. What really happened? There were unverified reports about alleged sexual assault of one of the students. Finally, there was a protest inside the campus. Some of them students resorted to vandalism. They broke the window panes. They also started breaking those glasses also there. And finally, they came out on road. They tried to block the road. When they tried to block the National Highway, that was the time when police tried to disperse them. And when police tried to disperse them, they burned some of the police vehicle. They also resorted to stone pelting. And finally, police had to resort to cane charging to disperse them. But now situation is under control. What the students are saying, they think that some outsiders are involved. That's what actually the LPU authorities are also saying. They say that some anti-social elements are behind this conspiracy, because they feel people are trying to tarnish image of the university. That's why they indulge in this thing, and they were trying to spread rumors through social media. And there is another investigation going on, because a similar thing happened in Chitkara Institute also. They feel that this is a similar kind of a template what was seen in Chitkara. Maybe the similar template has been replicated. So they are looking into that aspect. But what is more shocking is that politics has already started over this issue. We have seen that the BJP is trying to blame Aam Aadmi Party. They are saying that this is diversionary tactics, because if we talk about the owner of this university, Ashok Mittal, he was earlier the Rajya Sabha member from Aam Aadmi Party. He had left the party in the month of April this year, and he had joined BJP. And they say, the BJP is saying that basically they are trying to settle score. That's why they have hatched this kind of a conspiracy. Let's see what really will come out. The investigation right now is going on. The only good news is that life is limping back to normalcy after 48 hours.
1: All right, Pradeep, thanks so much for joining us with that. And yes, normalcy now that the university is closed for 10 days. But let's take you, thank you so much, Pradeep, for joining us. Let's take you through all these developments. It was for a second time in less than 24 hours that again, you had this violence breaking out at a lovely professional university campus, with youths vandalizing vehicles, buildings and other properties. But as you heard there, Pradeep was also mentioning this, the students are claiming that outsiders may have been involved in this violence. A Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has ordered strict action against the culprits. He's directed the DGP to visit the spot as well. BJP leader Ravneet Singh Bittu accused the Mann government of allowing the violence, alleging a conspiracy to shut LPU. Congress leader Amrinder Raja Waring also attacked the Punjab government, accusing it of failing on law and order and fueling the unrest. Meanwhile, the Akali Dal has also attacked Aam Aadmi Party, alleging that the outsiders were brought in to fuel unrest at LPU. So massive political issue also there, with political conspiracy being alleged.
2: Punjab mein kanoon vyavastha ko Bhagwant Mann sarkar ne gundon ke hawale kar diya hai. Durbhagya se Punjab ho ya Haryana, dono sarkaron ke mukhyamantri comedy show zyada chalate hain aur sarkar kam.
3: ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਨ, ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਅੱਗ ਲਾਓ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿਓ।
4: ਜਲੰਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा देखने को मिल रहा है, पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया है। बच्चों ने दो प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, पर जो लोगों को आने जाने में, जो पथराव में लोगों को चोट लग सकती है या कई तोड़फोड़ हुई है, ये गलत है। हर व्यक्ति को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अभी बच्चों को शांति से रहना चाहिए।
1: In other news now, the Delhi Slapgate row is escalating. A complaint has been filed against Delhi Minister Parvesh Varma, who was seen on camera assaulting a man. Aam Aadmi Party has hit the streets demanding action. AAP workers have staged a protest in Tilak Nagar demanding an FIR as well as the arrest of Parvesh Varma. AAP leader Sahib Singh filed a complaint. He was the man who was seen being slapped. So he has filed a complaint against Parvesh Varma and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam. Meanwhile, the BJP flagged an earlier FIR against Sahib Singh. The case was registered in June at Tilak Nagar police station, with the BJP also claiming that he was previously arrested. Now, this comes after Aam Aadmi Party has alleged that the newly laid Vikaspuri road was of poor quality, claiming the surface could be pulled up by hand. The BJP has rejected this allegation, and that is why Parvesh Varma was there. The BJP, however, accusing AAP of deliberately damaging the road and staging a controversy to target the government.
5: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया. जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी. उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया. मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है.
6: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है. उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे. जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है. वो बात की जब उनके सामने है कि उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे. मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे.
7: फोन को भी नुकसान हुआ है.
6: फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा. लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है.
7: कितने बजे हुई है घटना?
6: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है. हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे. 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है.
7: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
6: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब. पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी. पुलिस जो गुंडे होते हैं ना, गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो है, PWD विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये. और ये बोलते हैं जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है.
8: देखिए, ये जो सड़क बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के PWD विभाग द्वारा बनी है. 3 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई आपने 23 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च के सड़क बनाई है, और ये सड़क कारपेट की तरह उखड़ रही है बनने के बाद, कारपेट की तरह. ये देखो ठीक है. अब ये वीडियो पहले तो मेरी इंस्टा से डिलीट करवा दी गई, कई जगह वीडियो वायरल हो गई. तो मुझे आज संडे का दिन है, 1:15 पर परवेश वर्मा जी जो दिल्ली सरकार के PWD मंत्री हैं, उनका कॉल आता है कि भाई मैं आपकी विधानसभा में आऊं तो वो सड़क का मेरे को इंस्पेक्शन करा दो. बहुत मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार, PWD मंत्री जी का शायद जमीर जाग गया. मैं यहाँ कुछ देर में पहुंच गया तो मंत्री जी के साथ भाजपा के बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ उनके कार्यकर्ता थे, सब ने कैमरे ऑन कर रखे थे, लाइव चल रहा था सबका, मेरे को और अच्छा लगा. तो मंत्री जी कह रहे बताओ यार कहाँ सड़क टूटी है, सड़क तो हमारी बहुत बढ़िया बनी हुई है, हमने तो उसके सारे इंस्पेक्शन करा लिए, कोर कटिंग भी करवा ली, क्वालिटी टेस्टिंग भी हो गई. तो मैंने कहा आओ जी, मैं इसी जगह पे उनको लेके आया और मैंने सड़क ऐसे, ये देखो अभी भी, मतलब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए, अभी भी सड़क उखड़ रही है. तो मैंने मंत्री जी को पूछा, मंत्री जी आप जवाब दो इस पर, आप पूछ रहे थे, मैंने दिखा दिया. अब होना ये चाहिए था कि PWD के इंजीनियर से मंत्री जी को जवाब लेना चाहिए था. ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे. बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो.
9: दिल्ली के तिलक नगर में BJP की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई, सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
10: जब हमारे विधायक ने और वहां के लोकल लोगों ने हाथ से तारकोल की रोड को तोड़ के दिखा दिया कि ये रोड निहायत ही घटिया क्वालिटी की बनी है तो प्रवेश वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। वो लोग जर्नैल सिंह को जवाब नहीं दे पाए, मगर उसके बजाय जो लड़का एक युवा वीडियो बना रहा था प्रवेश वर्मा ने उसको थप्पड़ मार दिया। आप सोचिए। और उसके बाद ये कायर प्रवेश वर्मा वहां रुका नहीं, इतना बहादुर नहीं है ये आदमी, पुलिस और सिक्योरिटी के पीछे छिप के ये आदमी कार से भाग गया।
11: जिस तरीके से कल ओपनली भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर थप्पड़ मारते हैं एक बच्चे पे, देखिए भले ही वो आम आदमी पार्टी का वर्कर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चा है। आप बच्चे को ओपनली थप्पड़ मारते हो क्योंकि आपके आसपास पुलिस है। दिल्ली के अंदर रेप होता है पुलिस नहीं दिखती, दिल्ली के अंदर सत्य निकेतन की बिल्डिंग गिरती है पुलिस एक्शन नहीं लेती, वहां पुलिस नहीं नजर आती, बट इन बड़े बड़े नेताओं के आसपास पुलिस नजर आती है। दिल्ली की इनको कोई चिंता नहीं है और आज जो कर्म कांड जिंदगी का होता है वो दिखाई दे रहा है।
1: Shifting focus, the political heat over the Election Commission and the SIR exercise intensifying. Congress Chief Mallikarjun Kharge has called for CEC Gyanesh Kumar's resignation, alleging serious concerns over democracy and the poll process. In fact, the Congress Working Committee will be meeting tomorrow and a meeting of the India bloc later this week. Meanwhile, Union Minister JP Nadda has hit back, accusing the Congress and the India Alliance of spreading confusion over India's progress, saying that Rahul Gandhi and Congress leaders are spreading rumors. Meanwhile, the CPM staged a protest in Patna demanding the CEC's resignation, and there have been protests over the weekend as well over this issue.
12: I have called a working committee meeting on tomorrow, and there we'll discuss, all the working committee members will give their suggestions. And we are going to fight seriously, and particularly this issue is concern to the entire country and also our existence of our democracy and also the country's survival. That's why we are very serious in this issue. We'll fight and we'll see that.
13: आज जब देश के 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर रहा है, वैश्विक मंच पर भारत का डंका बज रहा है, तब दुर्भाग्य से कांग्रेस और पूरी इंडी गठबंधन देश की इस प्रगति को देखकर कुंठित है और हताश है। राहुल गांधी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता।
14: ये प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने धोखा दिया इस देश को। यहाँ चुनाव चुराए जा रहे हैं और SIR पूरी तरह से गैरकानूनी, उसका संसद में फॉर्म नंबर 6 के परिवर्तन के लिए संसद में आना जरूरी है 1960 के नियमों को बदलने के लिए, वो नहीं आए तो वहीं से SIR गैर कानूनी हो जाता है, और अगर SIR गैर कानूनी है तो जो नाम काटे गए या जोड़े गए वो सब गैर कानूनी है।
1: Breaking news coming in that Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav will be skipping the India Alliance meeting, which will be taking place in Delhi on the 30th of September at Constitution Club. SPMP Ram Gopal Yadav will be attending the meeting in place of Akhilesh Yadav. Akhilesh Yadav will not be attending this meeting. Remember, India Alliance coming together after a long time over the issue of the Chief Election Commissioner and targeting the CEC, demanding his resignation. Already the BJP hitting out over this.
15: अभी हमारी विरोधी है, इंडी गठबंधन भी हमारा विरोधी है, ये जाएं तो भी ठीक, ना जाएं तो भी ठीक, भाजपा का विजय रथ या एक साथ आकर के लड़ेंगे तब भी नहीं रुकेगा, अलग रहकर अलग अलग लड़ेंगे तब भी नहीं रुकेगा, 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना तय है, जनता ने मन बना लिया।
1: Let's go across to Aishwarya now for more. And Aishwarya, this was being seen as, you know, a moment of opposition unity after a long time, this meeting on the 30th of September. Akhilesh Yadav has said he's skipping it because of some, you know, pre-planned meetings and programs. What do we make of this? He is, however, sending a representative.
16: Well, certainly the Samajwadi Party has made it clear that they will be sending the representative to the meeting that the India bloc have called in, as far as the allegations that have been leveled against the CEC. And it is the Bharatiya Janata Party which have hit out at the Samajwadi Party, stating that they have their own agendas in their mind. Certainly, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, is an important member, but he's skipping. The Congress Party have stated that the Samajwadi Party perhaps is sending their representative, and they are very much together with the India Alliance. Perhaps there has been cracks that were witnessed between the opposition. We have seen statements from the Samajwadi Party leaders and the Congress leaders over Akhilesh Yadav starting his Rath Yatra from the Raebareli constituency, where Congress Party have its own bastion. But Akhilesh Yadav, clearly they are campaigning on the behalf of Samajwadi Party, which clearly can be seen as tracks. But the India Alliance seems very confident, stating that the Samajwadi Party is together in the fight against the Election Commission.
1: All right, Aishwarya, thanks so much for joining us. In fact, let's listen into what KC Venugopal had to say.
17: And you are talking about the election, the CWC meeting and the India bloc meeting. So who all are coming? Because Akhilesh Yadav said that he has a prior appointment, so some other senior leaders will be coming.
18: No, that Rajya Sabha election nomination is there in you. That's what he told the Congress president. Yes. Senior leaders from his party, all other seniors are coming.
17: And we will be, what next action will we see?
18: We will decide in the meeting.
1: In fact, this controversy and massive political showdown, in fact, over this chief election commissioner and the opposition demanding his resignation has also led to Mamata Banerjee, former Bengal chief minister, dialing a CPM leader M.A. Baby ahead of a bipoll and also the meeting of the India bloc. In fact, Subhendu Adhikari has now slammed opposition parties, saying reports of Mamata Banerjee dialing M.A. Baby ahead of the bipoll, saying that they are finished. They can hold a meeting with 150 people gathering all their crooks and sycophants from across the state, but it amounts to nothing.
19: कुछ नहीं है, खत्म हो गया है. 150 लोग का मीटिंग किया पूरा प्रदेश से, उनका जितना भी चोर चामचा है सब लोग को लेकर वो खत्म हो गया है. कुछ होने वाला नहीं है यहाँ. ममता बनर्जी, राहुल गांधी और एमएबीबी थोड़ा केरल में हम में जाकर मीटिंग करें एक साथ. हाँ, केरल में कांग्रेस जीता है, वहाँ एसआईआर अच्छा है. और बिहार में कांग्रेस और ममता बुरी तरह से साफ हो गया, यहाँ खराब है, वहाँ मीठा था.
20: ये बंगाल का सवाल है ही नहीं, ये देश का सवाल है. ये देश का सवाल है. एम ए बेबी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पत्र लिखा है. ये तृणमूल का सवाल भी नहीं है, वो गैर बीजेपी तमाम पार्टियों को खत लिखे हैं. हम बंगाल में सिर्फ पार्टी नहीं, जो व्यक्ति हैं, जो गुट है, और वो सबको भी हम एक साथ करना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, धर्म शिक्षा को बचाने के लिए और वोटाधिकार को वापस लाने के लिए.
21: अभी आपको लग रहा है कि हाथ मिला रहे हैं या पर्दे के बाहर कैमरे के सामने पहली बार हाथ मिला रहे हैं? पर्दे के पीछे पहले से ही हाथ मिला के क्या गले मिला के बैठे हुए आप देख नहीं पा रहे हैं? ये इल्लीजिटिमेट लव अफेयर है, वो चलता है, सालों से चलता है उनका. सारे सो कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ पड़ने वाला.
1: Alright, let's go across to Ritik Mondal now for more on this story. And Ritik, so you have Subhendu Adhikari there ridiculing this, you know, recent development of Mamata Banerjee reaching out to the left, having a conversation with M.A. Baby.
22: See, one thing we need to understand, as per the Bengal politics is concerned, that Trinamool and Congress are being considered as arch rivals of each other since since his inception. But what we know now, Mamata Banerjee dialing MA baby on Friday has triggered a new round of thoughts in Bengal politics, which is why day after that, Mamata Banerjee herself clarified that for the further fight against BJP, she would consider every political party in which are opposing BJP as their friend, which is why she went on record and said that she would not see red or blue as color. So that it means it refers to the recent dialogues between two top leaders of the CPIM and Mamata Trinamool Congress, which is, it was a direct message to the party supporters of both the parties as per the Bengal politics is concerned. But BJP has hit out that, you know, taking a jibe, Shubhendu Adhikari, chief minister, has stated that they should, you know, come together as in Kerala, they can fight together with Congress and left and Trinamool Congress. So it's an interesting move as per Bengal politics is concerned. It is yet to see that when this entire batch of opposition leader are expected to meet on 30th of this month, what is going to be happen and what would be the take of the CPIM and Trinamool Congress, especially their alliance, are, you know, fighting BJP hand in hand in Bengal's perspective as well. Back to you.
1: All right, Ritik, thanks so much for joining us with all those details. And from West Bengal now to Jammu and Kashmir, and the BJP has moved a resolution to remove the Jammu and Kashmir Assembly Speaker. The BJP is questioning the conduct of the Speaker after he allowed the resolution for restoration of statehood with a reference to Jammu and Kashmir Autonomy 2000. So now the BJP there moving a resolution to remove the Assembly Speaker. As you can see, chaos there taking place in the assembly with leaders rushing to the well, papers also being thrown and sloganeering taking place in the Jammu and Kashmir assembly. The BJP there asking for the removal of the speaker.
0: At this stage, our certain blogs have reported that some deserving households are not...
1: All right, breaking news coming in from Mumbai, where the parents of Sahil Wakade have begun a hunger strike demanding justice. Remember, Sahil Wakade, a second-year student, was found hanging in his hostel room on the evening of September 18th, hours after he was allegedly caught using his mobile phone to access ChatGPT during an examination. Now, his parents have alleged caste discrimination against their son. The matter is being investigated by the police, and they are now staging this protest at Azad Maidan. In fact, NDTV's Abhishek sent us this report.
2: It's been more than a week after the suicide of IIT Bombay student Sahil Wakode, and his parents are demanding justice. We're present here at Azad Maidan, and you can see they have started their hunger protest since morning and are demanding immediate arrest of Professor Dulla and Director Kedare. Consistently, their allegations were that they were not allowed to protest outside IIT Bombay, and after securing due permission for a day today, they have started their hunger strike. And what they say that subsequently, permission will be taken for further days, and this protest will continue. One and single pointed demand that the Professor Dulla and the Director Kedare should be immediately arrested. Crime branch is investigating the matter, and also the statements of both the parents have been recorded. But you know, this situation, clearly you can see after in this scorching heat, they are sitting without food, and finally they have lied down with the single pointed demand that the professor and the director should be arrested, and definitely someone should at least take cognizance what they want and what exactly should be done into the entire matter is something what they are expecting.
1: All right, with that, we'll slip into a short break. More news updates coming up on the other side. Do stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: The ideas, the issues, the questions that matter. NDTV Yuva, Young Voices, Bold Dialogues. 28 September 2026.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज

0: versus Aam Aadmi, Kejriwal and Bhagwant Mann government. And clearly they are now going to try and do a cover-up operation, blame outsiders who within them. How is Kejriwal and Sisodia and Satinder Jain sitting and controlling every department of Punjab, including the CM, and every department and every police officer, their transfer, everything is being done by them. Are they not outsiders? So clearly all these outsiders who were allowed in, what was the police doing? When there's so many police personnel, how did the outsiders get in? These outsiders who have arrived from Delhi need to answer. And then how are the students catching them? What was this outsider Bhagwant Mann and his police doing? If poor students can catch these guys, then is the police is incompetent? Or are they sleeping or have they been told? And now they've taken those people who the children have caught. Have they registered an FIR? Have they told who they are? Where they've come from? Why is it not being told to the public? So clearly there is something going on. A proper investigation needs to be done. And to three, 4 months before elections, if these people could, that Naresh Yadav of theirs could come in 2016
1: right.
0: and do the Beadbi of the Quran Sharif and Malher Kotla and set fire. And everyone knows he got convicted in that. And it was the same Harpal Chima, finance minister, and Harjot Benz, the other minister, who defended him. And the government came in power and took back all this. They could do that
1: right,
0: before
1: ma'am.
0: That election. Then Sam Dham, Dandhe, they are openly saying they're going to do it. 4 months to elections, this is just the start. They're going to set fire right. to Punjab to be out of this place as soon as possible.
1: Right. Thanks very much for speaking with us here on NDTV. That was Shirmini Kali, the leader in Bhatinda, MP Harsimrat Kaur Badal. Let's now give you a lowdown of all that has actually transpired at the lovely professional university so far. There have been massive protests and demonstrations over alleged sexual assault claims at lovely professional university, which erupted into violence, with the situation spiraling into arson and even vandalism. Parts of the campus were set ablaze, which you see on your screens right now, buildings perhaps damaged. Vehicles were torched and property was damaged as clashes broke out between students and police through the night. Police were deployed in large numbers to bring the situation under control, with several police officers reportedly injured in the violence as well. Amid the unrest, LPU has suspended regular classes for 10 days, with a large number of students now packing their bags and heading home from the campus. Meanwhile, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has now ordered action against those responsible for the LPU violence. After the CM's directive, DGP Gaurav Yadav visited the spot and assessed the situation on ground. On the other hand, LPU Dean Saurabh Lakhanpal blamed anti-social elements, saying that the university suspects a conspiracy and that there might be a hand from outside. Take a listen to all the reactions coming in on this story.
2: 40 घंटे के बाद एलपीयू में यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य नजर होती हुई नजर आ रही है. हमने देखा कि किस तरीके से परसों एक पोस्ट की वजह से यहाँ पे रूमर फैलता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, और दूसरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी चलाएगी. इस समय हमारे साथ स्टूडेंट्स, उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, उनसे बातचीत करेंगे, मुझे ये बताएंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये सारा प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, मामला कैसे.
3: बेसिकली हमें रेडिट पे मैसेज आया था कि लड़की का रेप हुआ है और 2 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो उसके लिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट चालू किया. पीसफुल प्रोटेस्ट चालू करते करते क्या हुआ, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था. उसी में कुछ बच्चे क्या किया, स्टार्ट किया तोड़ा तोड़ी करना, उसके बाद रात तक गाड़ी जला दिया पुलिस का, पुलिस पे पत्थरबाजी हो.
2: बात बताइए, आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये सच है खबर या झूठ है?
3: हमें बेसिक गर्ल्स हॉस्टल से भी ये मैसेज आ रहा था कि ये बात सच है, कि गर्ल्स हॉस्टल से पूरा का पूरा वो रोक खाली करवा दिया गया है, लड़कियों को घर भेज दिया गया है.
2: आपने कोई देखा जो लोग थे वहाँ पे जो तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या वो आपके बीच में से स्टूडेंट्स थे, या जैसे ये कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स?
4: हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मास्क पहन रखा है. अब कुछ लोग हैं कि जो मतलब मे बी सीसीटीवी से बचने के लिए जो यहाँ के नॉर्मल है उसने भी मास्क पहने, और कुछ लोग हैं जो बाहर से आए उन्होंने भी मास्क. पर डिफरेंस ये था कि जो अधिकतर जो तोड़फोड़ करने वाले थे उन्होंने प्रॉपर लोहे की रॉड ले रखे थे, ये सब जो जिससे आपको चोट लग सकती थी वो. अब उनका मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं जिससे और ज़्यादा वायलेंस फैल सके, वो चीज़ें में ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे. कि कहीं उन्होंने देख लिया कि एसी है उसको तोड़ दिया, बीच में से एक नहीं कि हाथी की झुंड चलती है तो सब तोड़ते हुए चल रहे हैं.
2: जो ये सारा मामला हो चुका है, आपको लगता है कि कहीं आपको सबको वेरीफाई करना चाहिए था, एक पोस्ट को देख के भटकना नहीं चाहिए था अपनी राह से, और एक उस बहकावे में नहीं आना चाहिए?
5: देखिए बात ये है ना कि एक तो मुद्दा जो है जस्टिस का है मुद्दा, ठीक है, जस्टिस का मुद्दा है। अब जस्टिस के बीच क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए अचानक, मतलब बाहर के ही थे, वो भी आके इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ हुई। कल पुलिस की गाड़ी वाड़ी सब जला दी।
6: आप भी उस समय बाहर थे जब?
5: हम भी उस टाइम पे बाहर ही थे।
6: बाहर जलाई किसने? पुलिस की
5: जलाई कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ अब हॉस्टल के बच्चे मिले हुए होंगे।
6: गाड़ियों को अचानक क्यों जलाया जब पीसफुल प्रोटेस्ट को होते होते?
5: पीसफुल प्रोटेस्ट तब हो ही नहीं रही थी, बात यह ना कि पुलिस मारना स्टार्ट कर रही थी बच्चों को।
7: इवन आई एम ओवर हियर रिसर्च स्कॉलर, सो आई एम टोटली अपसेट एंड मोर ओवर आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ।
6: लगता है कि इससे यूनिवर्सिटी के जो इमेज पे भी फर्क पड़ेगा और आप लोगों को भी?
8: नहीं सर, देखिए अगर बात करें इमेज की, तो इमेज यूनिवर्सिटी ने कमाया है, खरीदा नहीं है, तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं और बात ये है कि ये मुद्दों का फायदा उठाया गया है।
9: सारा दिन इंगेजमेंट जो सा चलता रहा, क्योंकि साढ़े ऑफिसर्स ने व्यू लिया कि सिंस देयर वॉज सम प्रोवोकेशन, उस तो बाद एक्शन होया सी, तो असी मिनिमम फोर्स यूज करांगे। तो अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन वॉज टेकन नॉट टू यूज फोर्स ऑन द स्टूडेंट्स, एंड सिंस देर वेर ग्रीवियंसिस अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एफर्ट्स वर मेड टू सॉर्ट आउट द ग्रीवियंसिस थ्रू डिस्कशंस। तो एक बड़े ओपन माइंड नाल, ओपन तरीके नाल, स्टूडेंट्स नाल गलबात करके इस नू वर्चुअली वी वर एबल टू सॉल्व द इशू यस्टरडे, कि जड़ा इंसीडेंट होया सी उस बारे FIR दर्ज की गई। तो FIR दर्ज करने तो बाद एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिड़ी उसनू काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इंसीडेंट की कीती जाऊगी।
10: FIR थी वो हमने रजिस्टर कर ली थी, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम लगी हुई है, तो अभी उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा।
11: विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाए?
10: देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में हम कर
12: रहे हैं। सर क्या रूमर है, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स है, एक्चुअल रियलिटी क्या, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर प्लांटेड या फैब्रिकेटेड मैसेज?
10: देखिए FIR दर्ज हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्टूडेंट्स को क्लियरली हमने ये भी बताया कि पुलिस ने बहुत रिस्ट्रेंट वर्ती है इस, और कोई पुलिस, मतलब पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। हम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे बच्चों जैसे हैं, और इसीलिए जो कल पूरा दिन नेगोशिएशंस, मल्टीपल नेगोशिएशंस हमने की, और स्टूडेंट्स को भी हिदायत की गई कि जो है अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें।
1: And we have some more breaking news coming in on this very story. As we can see, this issue has become extremely political, and now the Bharatiya Janata Party has also hit out at what is happening at the lovely professional university. Politics over LPU violence, BJP says deliberate bid created unrest. BJP goes on to say that the students have been largely charged at Aam Aadmi Party's behest. The Bharatiya Janata Party also says that Punjab police rather manhandled the students. This at a time when we've been seeing vandalism inside the campus at LPU. Meanwhile, the Aam Aadmi Party has said that the situation needs to be probed and we are taking all required action. But politics erupting over this issue few months ahead of elections in Punjab, with the BJP now saying that Aam Aadmi, that there's been violence and arson under the Aam Aadmi Party's rule in Punjab, and politics over LPU violence as well. A short, I want to take a listen to what Pradeep Bhandari said. We'll go back to him then again.
13: अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे पंजाब पुलिस का ये ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल के कहने पे फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं, पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखी।
1: You're witnessing politics erupting over what happened at LPU. There's a political war that has now escalated over the LPU campus unrest. With the opposition gunning for the Punjab government, BJP has now hinted at a conspiracy, alleging that the Bhagwant Mann-led Aam Aadmi Party government orchestrated the violence. BJP alleges that the escalation happened because Dr. Ashok Mittal, who runs the university, switched from Aam Aadmi Party. Congress too has attacked the Punjab government, accusing it of failing on law and order and fueling the unrest in the state. Meanwhile, the Shiromani Akali Dal has also attacked the Aam Aadmi Party, alleging that outsiders were brought in to fuel unrest at LPU.
13: अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पंजाब पुलिस का ये ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल के कहने पे फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से. साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है. इससे ये स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं, पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखी.
14: कानून व्यवस्था किसी नाम की कोई चीज है ही नहीं है यार. थोनू कहता बहुत बारी क्या है कि हालात जेड़े बड़े नाजुक ने, इत्थे पुलिस डर रही है. इन्ना माड़ा हाल में कदे पंजाब दे इस तरह के हालात नहीं खराब हुए से. भगवंत मान मुकम्मल तौर पर फेल मुख्यमंत्री हो चुके हैं.
15: पंजाब में कानून व्यवस्था को भगवंत मान सरकार ने गुंडों के हवाले कर दिया है. दुर्भाग्य से पंजाब हो या हरियाणा, दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री कॉमेडी शो ज्यादा चलाते हैं और सरकार कम.
16: अरविंद केजरीवाल जी एक मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ये सारी घटनाक्रम को रंग देने के लिए 300-400-500 ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स को वहां पर जलंधर में भेजा है. इन लोगों ने वहां पे माहौल बनाकर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर हमला करवाया. पंजाब पुलिस ने इसका साथ दिया. झूठा आरोप बनाया गया पहले कि अरेप का है. अभी तक पंजाब पुलिस हमने इस चीजों के तथ्य नहीं ला पाई.
17: कल कई लोग फड़े गए हैं जिन्होंने बाहरले सन यूनिवर्सिटी नु बिलोंग नहीं करते, वो भेजे गए सन, यूट्यूबर सन, वॉकी टॉकी तक रिकवर हो रहे हैं, शार्प एज्ड वेपन रिकवर हो रहे हैं कि और जाके उथे तेल पाओ, अग लाओ, इस यूनिवर्सिटी नु जला के राख कर दियो.
18: ये कि इंसिडेंट हुआ उसमें पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी ज्यादा आती है. अगर उसकी कोई हुआ तो उसकी अगर शिकायत लिखाई जाती है तो सर पुलिस को एकदम उसमें अपने एक्शन में आना चाहिए. बच्चों ने क्यों इकट्ठे होकर उनमें आक्रोश हुआ, इस कारण कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. उनसे उनको हमेशा ये उम्मीद होती है कि जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एकदम की जाए, कानून के तहत होती है, वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, बच्चों में आक्रोश आया, तो इस कारण सब इकट्ठे होकर आगे बात होती है, वो बिगड़ जाती है. ये हमेशा एक संवेदना के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, पुलिस को देखने की ज़रूरत है कैसे उस बात को संभाला जाए. आपस में बातचीत होकर ये चीज़ों को ठीक किया जा सकता है.
1: We're slipping into a very short, quick break, but come right back. Lots more lined up.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Reports of a rape taking place on campus, and there was lathi charge as well, and blamed for so outsiders now being blamed for the escalation. In fact, the students regret the violence and the vandalism that has taken place on the campus. Well, let's go across now to Pradeep for more on this entire story. And Pradeep, tell, you've been speaking to students, many of those students claiming that it was outsiders who actually came in, infiltrated those protests, and that is why we are seeing these kind of scenes of arson and damage to property.
1: Yes, Gargi, you are absolutely right, because this morning we had been interacting with the students. What they told us, that it was the role of an outsider. They said that initially when they got the video message, they got agitated. They came out towards the campus. They were protesting peacefully. But somehow the outsiders came in. They were holding swords. They were carrying lathis in their hand. And finally, they instigated them. And after that, it was free for all. And nobody knew who was actually damaging the property, who was indulging in vandalism, because most of the people were wearing masks at that point of time. That's what the students are saying. They said that after that, they tried to block the highway because they didn't get a clear-cut reply from the authority side. While they were blocking the highway, that was the time when they were in charge. And finally, that further instigated students, and the three of the police vehicles were burnt. But they are totally blaming the outsiders for this thing, what really happened inside the campus. They said, we reject what happened, because at the end of the day, this is their campus. But police is right now investigating the matter.
0: Right.
1: SIT has already been constituted. Well, the DGP was here on the spot. He interacted with officials. He said that they are looking into all the aspects. And what they find is that somewhere it is similarity between what really happened in Patiala and what happened at LPU. They feel that same kind of a template has been replicated. So they are looking into whether there's a conspiracy or not. But yes, there is a political fallout of what really has happened inside the LPU campus.
0: Right.
1: We've seen each political party blaming other.
0: In fact, Pradeep, we'll come to the politics of it in just a moment, but let's listen into what many of the students had to tell you, where they claimed outsiders infiltrated the campus protests.
2: 48 घंटे के बाद LPU में यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य नजर होती हुई नजर आ रही है. हमने देखा कि किस तरीके से परसों एक पोस्ट की वजह से यहाँ पे रूमर फैलता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, और दूसरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी चलाएगी. इस समय हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, उनसे बातचीत करेंगे, मुझे बताएंगे कि हुआ क्या था, एग्जैक्टली ये सारा प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, मामला कैसे.
3: बेसिकली हमें रेडिट पर मैसेज आया था कि लड़की का रेप हुआ है और दो दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो उसके लिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट चालू किया. पीसफुल प्रोटेस्ट चालू करते करते क्या हुआ, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा, उसी में कुछ बच्चे क्या किया, स्टार्ट किया तोड़ा तोड़ी करना. उसके बाद रात तक गाड़ी जला दिया पुलिस का, पुलिस पे पत्थरबाजी हुआ.
2: बात बताइए, आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये सच है खबर या झूठ है?
3: हमें बेसिक गर्ल्स हॉस्टल से भी ये मैसेज आ रहा था कि ये बात सच है, कि गर्ल्स हॉस्टल से पूरा का पूरा वो रोक खाली करवा दिया गया है, लड़कियों को घर भेज दिया गया है CGPA के लालच में. ये सब हमें इन्फॉर्मेशन गर्ल्स हॉस्टल से आया था.
2: जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो आपने वेरीफाई किया, किस नंबर से आ रही थी?
3: नंबर नहीं, वीडियो मैसेज आ रहा था.
2: उसका वीडियो मैसेज,
3: वीडियो मैसेज आ रहा था.
2: आपने कोई देखा जो लोग थे वहाँ पे जो तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या वो आपके बीच में से स्टूडेंट्स थे, या जैसे ये कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स?
4: हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मास्क पहन रखा है. अब कुछ लोग हैं कि जो मतलब मे बी CCTV से बचने के लिए जो यहाँ के नॉर्मल उसने भी मास्क पहने, और कुछ लोग हैं जो बाहर से आए उन्होंने भी मास्क. पर डिफरेंस ये था कि जो अधिकतर जो तोड़फोड़ करने वाले थे उन्होंने प्रॉपर लोहे की रॉड ले रखे थे, ये सब जो जिससे आपको चोट लग सकती थी वो. अब उनका मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं जिससे और ज़्यादा वायलेंस फैल सके, वो चीज़ें उनमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे. कहीं उन्होंने देख लिया कि AC है उसको तोड़ दिया, बीच में से एक नहीं कि हाथी की झुंड चलती है तो सब तोड़ते हुए चल रहे हैं.
2: जो ये सारा मामला हो चुका है, आपको लगता है कि कहीं आपको सबको वेरीफाई करना चाहिए था, एक पोस्ट को देख के भटकना नहीं चाहिए था अपनी राह से और एक उस बहकावे में नहीं आना चाहिए?
5: देखिए बात ये है ना कि एक तो मुद्दा जो है जस्टिस का है मुद्दा, ठीक है, जस्टिस का मुद्दा. अब जस्टिस के बीच क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए अचानक, मतलब बाहर के ही थे, वो भी आके इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ हुई. कल पुलिस की गाड़ी वाड़ी सब जला दी.
2: आप भी उस समय बाहर थे जब?
5: हम भी उस टाइम पे बाहर ही थे.
2: बाहर जलाई किसने? पुलिस की गाड़ी
5: जलाई कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ अब हॉस्टल के बच्चे मिले हुए होंगे.
2: गाड़ियों को अचानक क्यों जलाया जब पीसफुल प्रोटेस्ट को होते होते?
5: पीसफुल प्रोटेस्ट अब हो ही नहीं रही थी. बात यह ना कि पुलिस मारना स्टार्ट कर रही थी बच्चों को.
2: आपको कैसा लग रहा है जो पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है सब मामले को?
6: ये तो अच्छा है एक लगे से, लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट एकजुट हो गए, लेकिन स्टूडेंट के फ़ायदा उठाते हुए बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो गए, लोकल लोग शामिल हो गए, जिसके

0: वजह से बहुत ज़्यादा भगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुआ, सब कुछ हुआ। इससे स्टूडेंट भी परेशान है, सब कोई परेशान है। हम लोग अपने घर जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के हम लोग अपने घर जा रहे हैं लीव ले के। और इससे यूनिवर्सिटी भी परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की भी ख़राब हुई है, सब कुछ ख़राब हुई है।
1: अफसोस होता है कि अब जब आप देखते हैं, क्योंकि आप इधर ही पढ़ने वाले हैं, अब जिस तरीके से ये तोड़ फोड़ हुआ है, आप ही की यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए?
2: बिल्कुल, आई एम रियली अपसेट। It's a so wonderful and beautiful university and providing number of courses which are not even available many of the other universities in India. So vandalism is always very worst. So ye students nahi ho sakte. Even I am a over here research scholar. So I am totally upset and moreover I am very emotional right now.
1: लगता है कि इससे यूनिवर्सिटी के जो इमेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों को भी?
3: नहीं सर, देखिए अगर बात करें इमेज की, तो इमेज यूनिवर्सिटी ने कमाया है, खरीदा नहीं है, तो इमेज पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं और बात ये है कि ये मुद्दों का फ़ायदा उठाया गया है।
1: आप कैसे देखते हैं ये जो 10 दिन के लिए क्लास वर्क सस्पेंड कर दिया गया है और मिड टर्म एग्ज़ाम भी थोड़ा जो पोस्टपोन कर दिया गया, कैसे देखते हैं ये? लगता है आपको ये सही कदम लिया है?
4: हाँ, वैसे ज़रूरी तो था क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अंदर तोड़ फोड़ और आगजनी की समस्याएं तो हुई है, और इससे हमें भी थोड़ा सा, लेकिन ये कि एग्ज़ाम तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि पढ़ने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जो अंदर वायलेंस हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक था खास करके, वो काफ़ी दुखद था।
1: सारे में कोई ऐसा कोई है जो सबक आप लोगों ने सीखा हो कि ऐसा कोई जो है?
5: सबक तो यही सीखा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो पीसफुल ही किया जाए, बाहर वालों को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया करना चाहिए। अगर बाहर वाले इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो बेसिकली हमारा मांग पहले ही पूरा हो जाता, अगर ये आग नहीं जलता, ये टूटना नहीं होता और किसी को मारा नहीं जाता।
1: आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कुछ लोगों का इल्ज़ाम है ये पॉलिटिकली?
6: ये तो कह सकते हैं कि इतना रेडीनेस नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के लिए, खास करके स्टूडेंट को इतना नहीं पता होता ये सब क्या करना है। वो मोस्ट मार्च कर सकते थे, वो आवाज़ कर सकते थे, बट ये एक्टिविटी होना कि लोहे रॉड लेके आना आग जलाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयरनेस, ये रेडीनेस होके आना, ये तो शो करता है कि इन केस कुछ ना कुछ तो आउटसाइडर के इन्वॉल्वमेंट है।
1: क्या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का रोल कैसा देखते हैं आप?
4: यूनिवर्सिटी का रोल एक्चुअली, जैसे मैं भी रात में जब आया था तो हम यही था कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, कि सुनने में आया था कि गर्ल के इससे कि मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हुआ है खिलवाड़, तो हम भी प्रोटेस्ट करने आए थे। फिर हमने सडनली देखा कि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था। तो यूनिवर्सिटी का एक मेरे लिए बड़ा शौक ये था कि कोई भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट रात में नहीं था, जबकि यहाँ इतने सारे गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी थे, बट रात में कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, कोई भी काउंटर वगैरह नहीं कर रहा था। एक वो मेरे लिए एक मेजर शौक था कि इतना हो रहा है और काउंटर कुछ भी कॉलेज की तरफ से कोई काउंटर मेजर नहीं लिया गया था।
1: और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते हैं आप? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते?
0: पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है, एक लिखा से ये अपना काम करे और ये रिजल्ट मिलेगी। और सबसे पहल का बात कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, मुद्दा ये था, इस पर काम करे और पकड़े। रेप हुआ है तो किस लड़की का हुआ है ये जानने की कोशिश करे, लड़की का नाम नहीं पता है।
7: So students there of the lovely professional university telling NDTV about how they feel the outsiders who infiltrated the protest, and that's why for a second time there was arson and destruction taking place on campus. Now the college has been closed for the next 10 days and many of the students have also gone home, with a large number of students in fact packing up their belongings. Meanwhile, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has ordered strict action against those responsible for the violence, and after the Chief Minister's directive, the DGP Gaurav Yadav visited the spot. He assessed the situation. On the other hand, the Dean Saurabh Lakhanpal blamed anti-social elements, saying that the university suspects a conspiracy.
8: ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਸ ਦੇਰ ਵਾਸ ਸਮ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਅ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਨੋਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੇਰ ਵੇਅਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਫਰਟਸ ਵਰ ਮੇਡ ਟੂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ थ्रू डिस्कशंस। तो एक बड़े ओपन माइंड नाल, ओपन तरीके नाल, स्टूडेंट्स नाल गलबात करके इसनों वर्चुअली वी वर एबल टू सॉल्व द इशू यस्टरडे, कि जिहड़ा इंसीडेंट होया सी उस बारे FIR दर्ज की गई, तो FIR दर्ज करने तो बाद एक हाई लैवल स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम बनाई गई है जी, उस काफ़ी डिटेल्ड इन्वैसटीगेशन इंसीडेंट की जाऊगी।
9: FIR थी वो हमने रजिस्टर कर दी, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम लगी हुई है, तो अभी उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा।
10: विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाए?
9: देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में हम कर
10: रहे हैं। सर क्या रूमर है, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स है, एक्चुअल रियलिटी क्या, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर प्लांटेड या फैब्रिकेटेड मैसेज?
9: देखिए एफ आई आर दर्ज हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्टूडेंट्स को क्लियरली हमने ये भी बताया कि पुलिस ने बहुत रिस्ट्रेंट वर्ती है इहदे विच, और कोई पुलिस मतलब पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। हम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे बच्चों जैसे हैं, और इसीलिए जो कल पूरा दिन नेगोशिएशंस मल्टीपल नेगोशिएशंस हमने की, और स्टूडेंट्स को भी हिदायत की गई कि जो है अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें।
0: क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए, लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है। और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की। वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के। उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
7: All right, and a political war also over the violence that broke out at the LPU. In fact, all gunning for the Bhagwant Mann government, claiming a conspiracy. The BJP has said because Dr. Ashok Mittal switched from Aam Aadmi Party to the BJP, and that is why this violence was orchestrated on the campus of the university. Congress too has attacked the Punjab government, accusing it of failing on law and order and fueling unrest, while the Akali Dal also attacked up, alleging that outsiders were brought in to fuel the unrest.
11: अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप देखें कि कैसे पंजाब पुलिस का ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल के कहने पे फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखी।
12: कानून व्यवस्था किसे नाम की कोई चीज है ही नहीं है यार। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
13: ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ भगवंत मान सरकार ने गुंडों के हवाले कर दिया है। दुर्भाग्य से पंजाब हो या हरियाणा, दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री कॉमेडी शो ज्यादा चलाते हैं और सरकार कम।
14: अरविंद केजरीवाल जी एक मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ये सारी घटनाक्रम को रंग देने के लिए 300-400-500 ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स को वहां पर जलंधर में भेजा है। इन लोगों ने वहां पे माहौल बनाकर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर हमला करवाया। पंजाब पुलिस ने इसका साथ दिया, झूठा आरोप बनाया गया पहले कि अरेप का है। अभी तक पंजाब पुलिस हमने इस चीजों के तथ्य नहीं ला पाई।
15: कल कई लोग फड़े गए हैं जिन्होंने बाहरले सन यूनिवर्सिटी नु बिलोंग नहीं करते, वो भेजे गए सन, यूट्यूबर सन, वॉकी टॉकी तक रिकवर हो रहे हैं, शार्प एज्ड वेपन रिकवर हो रहे हैं कि और जाके उथे तेल पाओ, अग लाओ, इस यूनिवर्सिटी नू जला के राख कर दियो।
16: ये इंसिडेंट हुआ उसमें पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी ज्यादा आती है। अगर उसकी कोई हुआ तो उसकी अगर शिकायत लिखाई जाती है तो सर पुलिस को एकदम उसमें अपने एक्शन में आना चाहिए। बच्चों ने क्यों इकट्ठे होकर उनमें आक्रोश हुआ, इस कारण कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उनसे उनको हमेशा ये उम्मीद होती है कि जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एकदम की जाए, कानून के तहत होती है, वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, बच्चों में आक्रोश आया, तो इस कारण सब इकट्ठे होकर आगे बात होती है, वो बिगड़ जाती है। ये हमेशा एक संवेदना के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, पुलिस को देखने की ज़रूरत है कैसे उस बात को संभाला जाए, आपस में बातचीत होकर ये चीज़ों को ठीक किया जा सकता है।
17: देखिए, ये आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है। हमेशा ही जब ये सात मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा वाले बीजेपी में आए, तो आपने देखा किस तरह इन्होंने वो जो अपने क्रिकेटर थे हरभजन सिंह, उनके घर के बाहर लिखा भाई ये यानी के देशद्रोही है, ये इसने पार्टी को धोखा दिया है।

0: सो ये एक तरीका तौर तरीका है आम आदमी पार्टी के लोगों का, भाई ये उन लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं। यही लवली यूनिवर्सिटी में जो ये काम चल रहा है, इसके पीछे आम आदमी पार्टी सारे जितने, क्योंकि बड़े जितने भी ये गलतियां करते हैं उसको छुपाने के लिए इन्होंने इस किस्म का ये सारा षड्यंत्र किया।
1: Alright, let's shift focus now to the Delhi slapgate row, and this is after Delhi Minister Parvesh Verma slapped a man yesterday as he was on a road inspection. He slapped him right on camera. A complaint has also been filed by the man against the Delhi minister. However, Parvesh Verma has claimed that the man, who is a member of the Aam Aadmi Party, was in fact abusing his family. Now, AAP has hit the streets demanding action. AAP workers staged a protest outside Parvesh Verma's house in the national capital, demanding the minister's arrest. Parvesh Verma has said that Jarnail Singh works on the behest of AAP and he wanted to seek revenge. AAP leader Sahib Singh has filed a complaint against Parvesh Verma. He is the person who was slapped, Sahib Singh, and he has filed a complaint against Parvesh Verma and 12 to 15 others, also seeking a probe into the alleged road scam. Meanwhile, the BJP has flagged that there was an earlier FIR against the slapped man, Sahib Singh. The case was registered in June, is what the BJP has pointed out, and that he was previously arrested in this case as well.
2: आज दिल्ली में तीन महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं, और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है। जो लोग सारा एक्सटोर्शन करते हैं वो दिल्ली का मोबाइल नंबर नहीं रखते, वो दुबई का मोबाइल नंबर रखते हैं, ताकि कोई उनके मोबाइल को टैप नहीं कर सके। आज से तीन महीना पहले जरनेल सिंह के खुद के सगे भांजे ने, और जो कल आम आदमी पार्टी का गुंडा जिसने मेरे राउंड को खराब किया, वो दोनों के ऊपर में एफआईआर दर्ज होती है और वो दोनों को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है।
3: मैं अभी 4:30 बजे वहाँ पे तिलकनगर जा रहा हूँ इस सिलसिले में, और सड़क वहाँ पे जो बनाई इन्होंने वो हाथ से निकल रही थी, टूट रही थी, कल सब लोगों ने वीडियो पे देखा। और इनके मंत्री जो हैं, इनके मंत्री ने खींच के थप्पड़ मारा एक लड़के को, इस मंत्री को गिरफ्तार करो, और इन सारे इंजीनियर्स को जो जिन लोगों ने सड़क बनाई है उनको गिरफ्तार करो।
4: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितने का घोटाला हुआ है, उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने है कि उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे, मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे।
5: उनको भी नुकसान हुआ है?
4: फ़ोन को भी नुकसान हुआ है, फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा, लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है।
5: कितने बजे हुई है घटना?
4: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है। हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे, 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है।
5: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
4: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी। पुलिस जो गुंडे होते हैं ना, गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो है, PWD विभाग के मंत्री वैसे भगे हैं ये, और ये बोलते हैं जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है।
1: So Delhi Minister Parvesh Verma, they're justifying the slap, saying that Sahib Singh, the man who was slapped, had a case against him previously. Well, with that, we'll sip into a short break. Coming up on the other side, opposition protests over the Chief Election Commissioner. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
1: You watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links, and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/NDTV. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our product.
1: Welcome back. Now, the opposition and the Congress continuing to target Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, as well as protest over the SR process. In fact, there's going to be a meeting of the CWC tomorrow and a meeting of the India bloc in Delhi at the end of the month. I remember they're asking Gyanesh Kumar to step down, and there have been protests in different parts of the country, as you can see there today as well. And over the weekend, those protests continuing. Now, Congress Chief Mallikarjun Kharge called for CC Gyanesh Kumar's resignation, alleging serious concerns over democracy and the poll process. He spoke about the meeting that the India bloc will be holding. Meanwhile, Union Minister JP Nadda hit back, accusing the Congress and India Alliance of spreading confusion over India's progress, saying that Rahul Gandhi and Congress leaders are spreading rumours. Meanwhile, the CPM has also staged protests against the Chief Election Commissioner.
3: I have called a working committee meeting on tomorrow, and there we'll discuss. All the working committee members will give their suggestions, and we are going to fight seriously, and particularly this issue is concern to the entire country, and also our existence of our democracy, and also the country's survival. That's why we are very serious in this issue. We'll fight and we'll see that.
4: आज जब देश के 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर रहा है, वैश्विक मंच पर भारत का डंका बज रहा है, तब दुर्भाग्य से कांग्रेस और पूरी इंडी गठबंधन देश की इस प्रगति को देखकर कुंठित है और हताश है। राहुल गांधी जी, कान खोलकर सुन लीजिए। झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता।
5: मैं मानता हूं कि ये हताशा और निराशा है, जिन्होंने आज यही कांग्रेस के लोग जब केरल में चुनाव जीतते हैं तो उस दिन इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है, जिस दिन तमिलनाडु में चुनाव जीतते हैं इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में जब हारते हैं तब वो इलेक्शन कमीशन दोषी, जब कर्नाटका में उनको जीत मिलती है तो इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है, लेकिन जब गुजरात में जीत होती है तो पश्चिम बंगाल और गुजरात में जब जीत मिलती है तो इलेक्शन कमीशन, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और राहुल गांधी जी देश की जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, टीएमसी के लोग, जनता ने उनको जो सबक सिखाया उससे सीखने की आवश्यकता है, उससे सीखी कि आपने गलतियाँ क्या की।
6: जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा बिंदुवार तरीके से हर एक विषय जो हम लोगों ने उठाने का काम किया उसको लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जवाब दिया, यकीनन जहां मैं संतुष्ट हूं, वहीं विपक्ष जब बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहां पे एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहां पे इनकी सरकारें हैं? अगर कल को कर्नाटका में इनकी सरकार बनी, कैसे बनी? अगर आपको इस प्रक्रिया पे ही विश्वास नहीं है, केरल में आपकी सरकार कैसे बनी, हिमाचल में आपकी सरकार कैसे चल रही है?
7: Frankly, the only conspiracy we see is to deprive Indian citizens of their democratic constitutional right to vote. That conspiracy has to be exposed and destroyed. Let every Indian citizen have a vote. It is better that there may be 5 or 10 people who don't have the right to vote who are voting than that crores of people who have the right to vote are being deprived of the vote. That is a real assault on our democracy.
8: ये प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने धोखा दिया इस देश को। यहाँ चुनाव चुराए जा रहे हैं और SIR पूरी तरह से गैरकानूनी है। उसका संसद में फॉर्म नंबर 6 के परिवर्तन के लिए संसद में आना जरूरी है, 1960 के नियमों को बदलने के लिए। वो नहीं आए तो वहीं से SIR गैरकानूनी हो जाता है, और अगर SIR गैरकानूनी है तो जो नाम काटे गए या जोड़े गए वो सब गैरकानूनी है।
1: All right, let's shift focus now to Ujjain, where there's been tension and protest today over the proposed demolition of the Shahi Masjid there in Ujjain. In fact, now a decision in the hearing over the Ujjain Shahi Masjid issue, which is concluded in the Madhya Pradesh High Court. Two Muslim parties had approached the Indore bench over the proposed demolition of a portion of the Mosque Road widening. One party then withdrew the petition after there were discussions with the administration, while an agreement was reached on the petition concerning the affected section. Under this agreement, no more than 3 feet of the mosque will be demolished, with a request for the timely provision

0: कि एक तो मुद्दा जो है जस्टिस का है मुद्दा, ठीक है, जस्टिस का मुद्दा। अब जस्टिस के बीच क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए अचानक, मतलब बाहर के ही थे, वो भी आके इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ हुई। कल पुलिस की गाड़ी वाड़ी सब जला दी।
1: आप भी उस समय बाहर थे जब?
0: हम भी उस टाइम पे बाहर ही थे।
1: बाहर जलाई किसने? पुलिस की
0: जलाई कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ अब हॉस्टल के बच्चे मिले हुए होंगे।
1: गाड़ियों को अचानक क्यों जलाया जब पीसफुल प्रोटेस्ट को होते होते?
0: पीसफुल प्रोटेस्ट तब हो ही नहीं रही थी, बात यह ना कि पुलिस मारना स्टार्ट कर रही थी बच्चों को।
1: आपको कैसा लग रहा है जो पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है सब मामले को?
2: ये तो अच्छा है एक लगा से, लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट एकजुट हो गए, लेकिन स्टूडेंट के फ़ायदा उठाते हुए बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो गए, लोकल लोग शामिल हो गए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा भगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुआ, सब कुछ हुआ। इससे स्टूडेंट भी परेशान है, सब कोई परेशान है। हम लोग अपने घर जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के हम लोग अपने घर जा रहे हैं लीव लेके, और इससे यूनिवर्सिटी भी परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की भी ख़राब हुई है, सब कुछ ख़राब हुई है।
1: अफसोस होता है कि अब जब आप देखते हैं, क्योंकि आप इधर ही पढ़ने वाले हैं, अब जिस तरीके से ये तोड़फोड़ हुआ है, आप ही की यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए?
3: बिल्कुल, आई एम रियली अपसेट। इट्स अ सो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ कोर्सेज विच आर नॉट इवन अवेलेबल मैनी ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सो वैंडलिज्म इज ऑलवेज वेरी वर्स्ट, सो ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। इवन आई एम अ ओवर हेयर रिसर्च स्कॉलर, सो आई एम टोटली अपसेट एंड मोर ओवर आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ।
1: लगता है कि इससे यूनिवर्सिटी के जो इमेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों को भी?
4: नहीं सर, देखिए अगर बात करें इमेज की, तो इमेज यूनिवर्सिटी ने कमाया है, खरीदा नहीं है, तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, और बात ये है कि ये मुद्दों का फ़ायदा उठाया गया है।
1: आप कैसे देखते हैं ये जो 10 दिन के लिए क्लास वर्क सस्पेंड कर दिया गया है और मिड टर्म एग्ज़ाम भी थोड़ा जो पोस्टपोन कर दिया गया, कैसे देखते हैं ये? लगता है आपको ये सही कदम लिया है?
5: हाँ, वैसे ज़रूरी तो था, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की समस्याएं तो हुई है, और इससे हमें भी थोड़ा सा, लेकिन ये कि एग्ज़ाम तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि पढ़ने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जो अंदर वायलेंस हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक था खास करके, वो काफ़ी दुखद था।
1: सारे में कोई ऐसा कोई है जो सबक आप लोगों ने सीखा हो कि ऐसा कोई जो है?
6: सबक तो यही सीखा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो पीसफुल ही किया जाए, बाहर वालों को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया करना चाहिए। अगर बाहर वाले इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो बेसिकली हमारा मांग पहले ही पूरा हो जाता, अगर ये आग नहीं जलता, ये टूटना नहीं होता और किसी को मारा नहीं जाता।
1: आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कुछ लोगों का इल्ज़ाम है ये पॉलिटिकली?
7: ये तो कह सकते हैं कि इतना रेडीनेस नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के लिए, खास करके स्टूडेंट को इतना नहीं पता होता ये सब क्या करना क्या। वो मोस्ट मार्च कर सकते थे, वो आवाज़ कर सकते थे, बट ये एक्टिविटी होना कि लोहे रॉड लेके आना, आग जलाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयरनेस, ये रेडीनेस होके आना, ये तो शो करता है कि इन केस कुछ ना कुछ तो आउटसाइडर के इन्वॉल्वमेंट है।
1: क्या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का रोल कैसा देखते हैं आप?
5: यूनिवर्सिटी का रोल एक्चुअली, जैसे मैं भी रात में जब आया था तो हम यही था कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, कि सुनने में आया था कि गर्ल की इससे कि मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हुआ है खिलवाड़, तो हम भी प्रोटेस्ट करने आए थे। फिर हमने सडनली देखा कि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था, तो यूनिवर्सिटी का एक मेरे लिए बड़ा शौक ये था कि कोई भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट रात में नहीं था, जबकि यहाँ इतने सारे गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी थे, बट रात में कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, कोई भी काउंटर वगैरह नहीं कर रहा था। एक वो मेरे लिए मेजर शौक था कि इतना हो रहा है और काउंटर कुछ भी कॉलेज की तरफ से कोई काउंटर मेजर नहीं लिया गया था।
1: और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते हैं आप? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते?
2: पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है एक लिहाज से, ये अपना काम करे और ये रिजल्ट मिलेगी। और सबसे पहल का बात कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, मुद्दा ये था, इस पे काम करे और पकड़े। रेप हुआ है तो किस लड़की का हुआ है ये जानने की कोशिश करे, लड़की का नाम नहीं पता है।
8: So you heard what the students of LPU have to say, but let's now tell you where the probe is headed to at this point of time. There've been an SIT team that's been formed, but as we speak, where is the probe headed to? First up, an SIT probe has been formed. The FIR has been filed against unknown people at this point of time. This is what the Punjab police also been doing. CCTV phone records have also been examined so far. When an SIT team has been formed, forensic analysis also being conducted. They're trying to talk to the students and to ascertain what exactly happened. That's one angle an SIT team has been formed. Second, a riot investigation is taking place. Inquiry into campus vandalism and arson. This is exactly what happened outside the LPU campus, where police vans were also burnt and vandalized. So there's been a separate parallel inquiry into the campus vandalism and arson. They're also looking at various angles. Number one, potential involvement involvement of outsiders, with a lot of students saying that it's not the students of LPU but rather outsiders who have created this chaos and vandalism at LPU. Apart from that, we've spoken about SIT probe and the panel inquiry. LPU is also conducting its own internal probe. LPU has initiated its own probe right now. By that, they're talking to various students, they're gathering statements, and they're also gathering the CCTV footage to ascertain what exactly happened with these protests that have started because of those unverified rooms. Okay, we have some breaking news coming in. Fresh CCTV footage from LPU captures the violence that unfolded amid protest on campus. The visuals, which we'll play in just moments from now, we have that on your screens right now. The visuals show chaotic scenes as the unrest escalated in LPU, with students now seen moving through the campus amid clashes and disruption. The footage on your screens right now, it's NETV exclusive. It comes as tensions at LPU intensified for the second time for 24 hours over protest following allegations of sexual assault, prompting the university to suspend classes. The college has also alleged that the involvement of outsiders in the violence, while the circumstances leading to the escalation remain under investigation. But that video is on your screens right now. You have those masked men. We don't know if they are students or outsiders, but masked men holding rods and sticks in their hand, creating that chaos inside the lovely professional university. We have that CCTV, which clearly captures the chaos and violence at LPU. A lot of students claim that outsiders involved in this. I'm going across to Pradeep for more on this. Pradeep, CCTV video NETV has access, which shows masked men holding rods and iron rods and sticks and creating chaos and violence at LPU. Still no clarity if these are students or outsiders, Pradeep.
9: Right now, it's a matter of investigation whether these are outsiders or these are students, but these are the shocking visuals. As you can see, the vandalism and the chaos inside the LPU campus is being caught on camera. This is the CCTV footage exclusively accessed by NDTV, in which you can see how they are breaking the locks. They are trying to damage the shutters. They are going inside, looting laptops, taking away the mobile phone. The only two shops they did not target was the bookstores. That actually makes people suspect that had they been students, they would have taken away the books also, but they did not touch the bookstore. That clearly indicates that maybe most of them were outsiders. And that's what actually the students had also been saying. They've been alleging that most of them were outsiders because it was free for all of a sudden. Initially, there was a peaceful protest. They saw that some of them wearing masks, they came inside. They were holding rods in their hands. They were even holding the swords in their hands. They mingled with the students. And then after that, it was free for all. And then finally, that they resorted to vandalism. They started damaging the property. And here in this video, you can see how they are breaking open one of the shops inside the LPU mall. And they are breaking the shop. They took away all the items inside the shop. So the question arises, if they are students, what they had to do with the ready-made garments, what they had to do with the laptops and mobile phone and all those things, why they took away all those things. So this is a matter of investigation. As you rightly said, this matter has been investigated at two fronts. One, the LPU is conducting an independent inquiry in this regard. They are independently looking into the matter. Then police is also looking into it. One, FIR is already lodged. Then second, the sit has already been constituted. They are looking into the CCTV footage also. And they even asked five of the students to go through the CCTV footage that is available to them. So that five members of the from the student community were also made to review the CCTV footage. I think this is a clear-cut evidence with the police right now, which they will be looking into, because this footage is only available with right now NDTV. It has been accessed by us, where you can see how they resorted to vandalism, how they resorted to chaos. And now the question arises, whether they were students or whether they were outsiders, that is a matter of investigation. Things will get clear once they will be able to go for the forensic review of the CCTV footage. The things will get clear. But right now, they're trying to assess these footages that is available to them. And the people are also being questioned by them. Some people have also been detained, where they're trying to find out whether there was any kind of a conspiracy. Somebody is, whether this was a political conspiracy that somebody was trying to destabilize the atmosphere, as already had been delegations from the BJP side. The former union minister,
8: But if you can just come back and look at this video, which NDTV has accessed, that new CCTV video, like you also mentioned, Pradeep, masked men, they're creating chaos and mayhem with those iron rods in their hands, trying to open perhaps the classroom at the LPU University. It does point out this can be an attempt by the outsiders. They're trying to break the locks there. But Pradeep, various facets as the investigation only goes ahead. While inquiring, SIT probe into those unverified claims and rumors. On the other hand, chaos and mayhem inside the LPU University.

0: thing on the screen. There was a total chaos outside the campus also.
1: Right, Pradeep, because we, like you pointed out, Pradeep, we are talking about the four CCTV videos that NDTV has right now access, which clearly shows masked men on campus, men covering their face on campus, and they're looting the shops, including laptop, footwear, clothing, and retailing outlets inside the Lovely Professional University amid this turmoil at this point of time. On your screens right now is another CCTV video that NDTV has accessed, which shows the mayhem and the chaos outside inside the campus of the students. But this is the video which perhaps will be probed by the SIT as well and by the police officials. Like my colleague Pradeep also pointed out, that these are masked men who are trying to open the shops inside the campus and trying to loot them, and this perhaps will be at the center of the investigation right now, to perhaps probe what led to that vandalism and arson, and if there was a role of the outsiders or not. But NDTV right now has access four CCTV videos as the investigation goes on. Pradeep, if I can come back to you, talk to us more about how these four CCTV videos will now be at the center of the investigation, not just by the LPU internal body, but also by the SIT and the police officials.
0: Be of great help to the SIT also, because definitely...
1: We'll come back to you shortly. Pradeep Bhandari for BJP is doing a press conference as we speak. Please take a listen.
2: Campus ke andar bhejne ka prayas kiya gaya. Kyunki students wahan bol rahe hain ki mask pehne hue, agar aap dhyan se photo mein dekhenge, इन फोटो के अंदर यहाँ पे मास्क पहने हुए लोग हैं और वहां स्टूडेंट्स बताते हैं कि कॉलेज के अंदर थे ही नहीं. मतलब क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपने गुंडों को भेजकर वो ही टूल किट का इस्तेमाल कर रही है जो दिल्ली के अंदर या अलग अलग जगह के अंदर हमने देखा. तीसरा, क्या ये लार्जर षड्यंत्र नहीं पॉइंट आउट कर रहा, जिस षड्यंत्र के तहत देश के युवा को सड़क पर उसके जेन्युइन इश्यूज को रिजॉल्व करने के बजाय विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं वहां पे ये आगजनी करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट प्रोटेस्ट के अंदर करते हैं और युवा के मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं. चौथा, इससे देश के युवा को समझना चाहिए कि जहां विपक्ष की सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार है, वहां पे युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, वहां युवाओं को लाठी मिल रही है. पांचवा, हर मुद्दे पे ट्वीट करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जो हर दो सेकंड में एक वीडियो बनाने के हैबिट हो गई है, आज उनने पंजाब और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंजाब की सरकार को अगर कोई चला रहा है वो अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से चला रहे. पांचवा और सबसे अहम मुद्दा, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये एक लार्जर टूल किट का हिस्सा है, जिस टूल किट के तहत देश भर में देश के युवा के कंधे पे ये अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये षड्यंत्र के बहाने या तो सत्ता में देश में आ जाएं, या जहां इनकी सरकार है जहां लेजिटिमेट इशू है वो अपने गुंडों को भेजकर युवाओं पे लाठीचार्ज कर रहे हैं. इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि विपक्ष के कण कण में इस देश के युवा के प्रति नफरत है. विपक्ष के कण कण में देश जा क्या युवा जब आवाज उठाता है, भले वो पंजाब हो, भले वो कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, उसको सिर्फ और सिर्फ लाठी मिलती है. और आखिरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भगवंत मान की है. द लॉ एंड ऑर्डर इज द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भगवंत मान. सो वी आस्क मिस्टर भगवंत मान and Mr. Arvind Kejriwal, that when will you come out of your deep sleep? जब यहाँ पूरी की पूरी brutality हम देख रहे हैं, तो क्या आपने जो लाठी चार्ज यहाँ पे किया है, क्या इससे पंजाब के होम मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के सुपर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जो शांत है, क्या ये सबकी डायरेक्ट कल्पेबिलिटी और क्रिमिनैलिटी इससे नहीं बनती? देश का युवा देख रहा है, जब उसने पंजाब के अंदर आवाज उठाई उसको लाठी मिली, जब उसने पंजाब के अंदर आवाज उठाई उसको षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के गुंडों द्वारा आगजनी मिली, जब उसने पंजाब के अंदर आवाज उठाई तो उसको सिर्फ और सिर्फ पंजाब की पुलिस द्वारा फीमेल छात्राओं द्वारा कॉलर पकड़ा गया. इन सबसे यही स्पष्ट है कि देश का विपक्ष इस देश के लोकतंत्र को स्ट्रीट से चलाने का प्रयास कर रहा है.

0: Between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
1: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
2: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
3: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Show.
4: Good evening and welcome to Nationwide at 6 on NDTV. I am Ankit Tyagi. In Punjab, there seems to be, some would suggest some sort of a planned, all these kind of unrest that we are seeing. Rumors on campuses turning into absolute chaos and tension. That is going to be our top focus this evening. NDTV, ladies and gentlemen, have now accessed four important clues. CCTV footage of the violence that took place at the lovely professional university, where now question is being raised, how did so many outsiders were able to get access to the university, come inside and in fact attack and break so many places? That's the latest that we are getting at this moment. So starting with this big breaking news that is coming in at this moment on the broadcast, where NDTV has accessed CCTV images that show how the chaos unfolded at the lovely professional university. Now, this CCTV captures the violence that unfolded amid the protests on the campus. The visuals show chaotic scenes as the unrest escalated, with students seen moving through the campus amid the clashes and the disruption. The footage comes as tensions at the LPU, that's a lovely professional university. Remember, the chairperson of this university is a BJP member of parliament who recently shifted from the Aam Aadmi Party to the BJP Rajya Sabha MP. Now, this intensified for the second time in 24 hours, ladies and gentlemen. Protest over allegation of sexual assault, prompting the university to suspend the classes. The university has also alleged involvement of outsiders in the violence, while the circumstances leading to the escalation remain under investigation. At this moment, there is not even clarity whether these alleged sexual assaults took place or they did not. The police is investigating the matter, but at this moment, there is a lot of tension as far as this university is concerned. Videos which NDTV has accessed also purportedly show looting at the campus shops, including laptop, footwear, clothing and retail outlets amid the ongoing turmoil. You will see a lot of people, those who have covered their faces, breaking the locks of the shops, opening the shutters and then taking the stuff which was inside, including mobile phones and laptops from the shops which were inside the campus. There was also, videos which will show you how the violence was taking place. A lot of people standing at one place, covering their faces with handkerchief and other, masks and all. And then they go onto the campus, breaking the property of the campus. As you would see, the CCTV footage very clearly shows how this entire unrest unfolded. Let's very quickly, once again, ladies and gentlemen, let me show you on the big screen. This is a shop on the campus. And you would see these three people, those who have their faces covered. Now, what they are doing is they are using that rod. They are breaking the lock. And once the lock is broken, then there is looting inside this shop. So it's just not about protest and what happened inside the campus, But look at this, people have come in and then they have started, whether it's money or other things, everything has been stolen, fighting amongst themselves as far as this entire loot is concerned. And all of them are then seen emptying these, water fridges and all. So there is mass-scale looting that took place, unrest, protest, damage to the property of the university. And at this moment, the investigation is on. My colleague Gurpreet Singh Chheena is joining us live from Fagwara, where the lovely professional university is situated. Gurpreet, two important things. Number one, has the police substantiated the allegations or at least the rumor of sexual assault that took place on the campus? What is the university and the students saying about it?
5: Well, yesterday it has been seen that when the students, they blocked the national highway, immediately after that it has been seen Punjab police formed a special investigation team in this case. All the student leaders, they have been taken inside that hostel where it was alleged by the student that there was one girl who was raped by unknown person. After that, it has been seen the police scanned all the CCTV camera footage, but they were not able to get any clue from there. After that, some of the student leaders, they made an announcement saying that we are supposed to give some time to the police for further investigation and this protest should be withdrawn immediately. But that not happened, and late night it has been seen that there was a violence which has been escalated within the campus also, outside the campus also. Some of the vehicle, they have been burnt by these protesters there, and after that it has been seen the police was able to control the situation on the ground. It has also been seen the police say this is the matter of investigation, because so far even the student leaders and the students, they were not able to give any name of the victim, and even they are not able to produce victim. But today again it has been seen DIG of Jalandhar range, he has come here, he was talking to the students, they were trying to get more clue for this allegation which has been leveled by the students. And it has also been seen that these allegations have been leveled against the management. They say the management did not pursue any investigation into these allegations, and that was the core reasons why they were holding protest against the management and they had blocked the national highway.
4: Gurpreet, one part of course is these allegations and the investigation. The other important thing is the CCTV footage that has been accessed by NDTV. It clearly shows a lot of young people, those who have masks on their faces, not only are they indulging in violence, they are also indulging in looting of the shops which were there on the campus property. Has the police identified these people? Who are these people and what is the administration saying about that?
5: This is the same question we have asked to Punjab DGP. He says that they are also trying to get more CCTV camera footage from within the campus also, outside the campus also. And at this point of time, they have also learned from the student some anti-social elements. They were able to make entry inside the campus, and the CCTV footage and CCTV various footage which we are showing to viewers at this point of time, we are showing that how the looting was carried out by some people who are covering their faces. Now the police were trying to collaborate, police are trying to connect all the dots in this investigation, and as what we have learned from the top police officers of Punjab, they say that a special investigation team has been formed and they are also trying to identify. But one thing is very clear, that what we have learned from the students also, some anti-social elements, and specifically the people from the outside, they were able to make entry, because some students, they allege in the morning, they say that some people, they were roaming inside the campus having swords in their hands, having sharp edged weapon in their hands, but they were not from the campus. So that is a part of investigation which is being carried out by the Punjab police to just elaborate that who are these people and why did they come there and why they were looting the shops inside the campus.
4: All right, Gurpreet, thank you for joining us with all those details. What I want to do now, there are some students of the lovely professional university that spoke to NDTV about the unrest on the campus and what they witnessed during the protests and the events that led to this escalation. Take a look.
6: 48 घंटे के बाद एलपीयू में यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य नजर होती हुई नजर आ रही है. हमने देखा कि किस तरीके से परसों एक पोस्ट की वजह से यहाँ पे र्यूमर फैलता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है और दूसरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी चलाएगी। इस समय हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, उनसे बातचीत करेंगे, मुझे ये बताएंगे कि हुआ क्या था, एग्जैक्टली ये सारा प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, मामला कैसे।
7: बेसिकली हमें रेडिट पे मैसेज आया था कि लड़की का रेप हुआ है और दो दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, तो उसके लिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट चालू किया। पीसफुल प्रोटेस्ट चालू करते करते क्या हुआ, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था, उसी में कुछ बच्चे क्या किया, स्टार्ट किया तोड़ा तोड़ी करना, उसके बाद रात तक गाड़ी जला दिया पुलिस का, पुलिस पे पत्थरबाजी हुआ।
6: बात बताइए, आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये सच है खबर या झूठ है?
7: हमें बेसिक गर्ल्स हॉस्टल से भी ये मैसेज आ रहा था कि ये बात सच है, कि गर्ल्स हॉस्टल से पूरा का पूरा वो रोक खाली करवा दिया गया है, लड़कियों को घर भेज दिया गया है CGPA के लालच में, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन गर्ल्स हॉस्टल से आया था।
6: आ रही थी जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो आपने वेरीफाई किया, किस नंबर से आ रही थी?
7: नंबर नहीं, वीडियो मैसेज आ रहा था उसका,
6: वीडियो मैसेज
7: आ रहा था।
6: आपने कोई देखा जो लोग थे वहाँ पे जो तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या वो आपके बीच में से स्टूडेंट्स थे या जैसे ये कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स?
8: हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने मास्क पहन रखा है। अब कुछ लोग हैं कि जो मतलब मे बी CCTV से बचने के लिए जो यहाँ के नॉर्मल उसने भी मास्क पहने, और कुछ लोग हैं जो बाहर से आए उन्होंने भी मास्क, पर डिफरेंस ये था कि जो अधिकतर जो तोड़फोड़ करने वाले थे उन्होंने प्रॉपर लोहे की रॉड ले रखे थे, ये सब जो जिससे आपको चोट लग सकती थी वो अब उनका मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी चीज़ को हम तोड़ सकते हैं जिससे और ज़्यादा वायलेंस फैल सके, वो चीज़ें में ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे, कि कहीं उन्होंने देख लिया कि AC है उसको तोड़ दिया, बीच में से एक नहीं कि हाथी की झुंड चलती है तो सब तोड़ते हुए चल रहे हैं।
6: जो ये सारा मामला हो चुका है, आपको लगता है कि कहीं आपको सबको वेरीफाई करना चाहिए था, एक पोस्ट को देख के भटकना नहीं चाहिए था अपनी राह से और एक उस बहकावे में नहीं आना चाहिए?
9: देखिए बात ये है ना कि एक तो मुद्दा जो है जस्टिस का है मुद्दा, ठीक है, जस्टिस का मुद्दा। अब जस्टिस के बीच क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए अचानक, मतलब बाहर के ही थे वो भी आके इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, कल पुलिस की गाड़ी वाड़ी सब जला दी।
6: आप भी उस समय बाहर थे जब?
9: हम भी उस टाइम पे बाहर ही थे। बाहर
6: जलाई किसने पुलिस की गाड़ी?
9: जलाई कुछ बाहर के लोगों ने, कुछ अब हॉस्टल के बच्चे मिले हुए होंगे।
6: गाड़ियों को अचानक क्यों जलाया जब पीसफुल प्रोटेस्ट को होते होते?
9: पीसफुल प्रोटेस्ट अब हो ही नहीं रही थी, बात यह ना कि पुलिस मारना स्टार्ट कर रही थी बच्चों को।
6: आपको कैसा लग रहा है जो पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है सब मामले को?
10: ये तो अच्छा है एक लगा से, लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट एकजुट हो गए, लेकिन स्टूडेंट के फ़ायदा उठाते हुए बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो गए, लोकल लोग शामिल हो गए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा भगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुआ, सब कुछ हुआ, इससे स्टूडेंट भी परेशान है, सबको ही परेशान है। हम लोग अपने घर जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के हम लोग अपने घर जा रहे हैं लीव लेके, और इससे यूनिवर्सिटी भी परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की भी ख़राब हुई है, सब कुछ ख़राब हुई है।
6: अफसोस होता है कि अब जब आप देखते हैं, क्योंकि आप इधर ही पढ़ने वाले हैं, अब जिस तरीके से ये तोड़फोड़ हुआ है, आप ही की यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए?
11: बिल्कुल, आई एम रियली अपसेट। इट्स अ सो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ कोर्सेज विच आर नॉट इवन अवेलेबल मैनी ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, सो वैंडलिज्म इज ऑलवेज वेरी वर्स्ट, सो ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। इवन आई एम अ ओवर हेयर रिसर्च स्कॉलर, सो आई एम टोटली अपसेट एंड मोर ओवर आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ।
6: लगता है कि इससे यूनिवर्सिटी के जो इमेज पे भी फर्क पड़ेगा और आप लोगों को भी?
12: सर देखिए, अगर बात करें इमेज की, तो इमेज यूनिवर्सिटी ने कमाया है, खरीदा नहीं है, तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, और ये बात ये है कि ये मुद्दों का फायदा उठाया गया है।
6: आप कैसे देखते हैं ये जो 10 दिन के लिए क्लास वर्क सस्पेंड कर दिया गया है और मिड टर्म एग्जाम भी थोड़ा जो पोस्टपोन कर दिया गया, कैसे देखते हैं ये? लगता है आपको ये सही कदम लिया है?
13: हाँ, वैसे ज़रूरी तो था, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की समस्याएं तो हुई है, और इससे हमें भी थोड़ा सा, लेकिन ये कि एग्ज़ाम तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि पढ़ने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो अंदर वायलेंस हुआ है इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक था, खास करके वो काफ़ी दुखद था।
6: सारे में कोई ऐसा कोई है जो सबक आप लोगों ने सीखा हो कि ऐसा कोई जो है?
7: सबक तो यही सीखा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो पीसफुल ही किया जाए, बाहर वालों को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया करना चाहिए। अगर बाहर वाले इन्वॉल्वमेंट नहीं करते तो बेसिकली हमारा मांग पहले ही पूरा हो जाता, अगर ये आग नहीं जलता है, ये टूटना नहीं होता और किसी को मारा नहीं जाता।
6: आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कुछ लोगों का इल्ज़ाम है ये पॉलिटिकली?
8: ये तो कह सकते हैं कि इतना रेडीनेस नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के लिए, खास करके स्टूडेंट को इतना नहीं पता होता ये सब क्या करना क्या, वो मोस्ट मार्च कर सकते थे, वो आवाज़ कर सकते थे, बट ये एक्टिविटी होना कि लोहे रॉड लेके आना, आग जलाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयरनेस, ये रेडीनेस होके आना, ये तो शो करता है कि इन केस कुछ ना कुछ तो आउटसाइडर के इन्वॉल्वमेंट है।
6: क्या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का रोल कैसा देखते हैं आप?
13: यूनिवर्सिटी का रोल एक्चुअली, जैसे मैं भी रात में जब आया था तो हम यही था कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, कि सुनने में आया था कि गर्ल के इससे कि मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हुआ है खिलवाड़, तो हम भी प्रोटेस्ट करने आए थे। फिर हमने सडनली देखा कि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था। तो यूनिवर्सिटी का एक मेरे लिए बड़ा शौक ये था कि कोई भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट रात में नहीं था, जबकि यहाँ इतने सारे

0: गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी थे, बट रात में कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, कोई भी काउंटर वगैरह नहीं कर रहा था। एक वो मेरे लिए मेजर शॉक था कि इतना हो रहा है और काउंटर कुछ भी कॉलेज की तरफ से कोई काउंटर मेजर नहीं लिया गया था।
1: और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते हैं आप? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे देखते हैं?
2: पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है, एक लिखा से ये अपना काम करे और ये रिजल्ट मिलेगी। और सबसे पहल का बात कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, मुद्दा ये था, इस पे काम करे और पकड़े। रेप हुआ है तो किस लड़की का हुआ है ये जानने की कोशिश करे, लड़की का नाम नहीं पता है।
3: Now, a rumor which has started this unrest at this moment, the investigation is on, but there is political war on this which has already started. The BJP calls this trigger as a toolkit, while the Aam Aadmi Party has said that the police is investigating this entire matter. Just take a look at how the political parties have now jumped in into this entire controversy.
4: अरविंद केजरीवाल जी एक मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने ये सारी घटनाक्रम को रंग देने के लिए 300-400-500 ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स को वहां पर जलंधर में भेजा है। इन लोगों ने वहां पे माहौल बनाकर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर हमला करवाया। पंजाब पुलिस ने इसका साथ दिया, झूठा आरोप बनाया गया पहले कि रेप का है। अभी तक पंजाब पुलिस हमने इस चीजों के तथ्य नहीं ला पाई।
5: कानून व्यवस्था किसी नाम की कोई चीज है ही नहीं है यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
6: ਅਗਰ ਆਪ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਧਿਆਨ ਸੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇ ਕਹਿਨੇ ਪੇ फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखिए।
7: पंजाब में कानून व्यवस्था को भगवंत मान सरकार ने गुंडों के हवाले कर दिया है। दुर्भाग्य से पंजाब हो या हरियाणा, दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री कॉमेडी शो ज्यादा चलाते हैं और सरकार कम।
8: कल कई लोग फड़े गए हैं जिन्होंने बाहरले सन यूनिवर्सिटी नु बिलोंग नहीं करते, वो भेजे गए सन, यूट्यूबर सन, वॉकी टॉकी तक रिकवर हो रहे हैं, शार्प एज्ड वेपन रिकवर हो रहे हैं कि और जाके उथे तेल पाओ, अग लाओ, इस यूनिवर्सिटी नु जला के राख कर दियो।
3: All right, the government in fact is saying that there is investigation which is going on at this moment. Let's very quickly listen in to my colleague Gurpreet Sheena, who is tracking the developments on this. Gurpreet, the opposition is calling it the toolkit. The opposition is saying that this is the failure of the Bhagwant Mann government. What is it that the Aam Aadmi Party government defense on this is?
9: Well, a clear word from the Chief Minister. He says he has already given a direction to the DGP Punjab that this matter should be investigated thoroughly. In the morning, it has been seen that DGP has also visited the campus and he has given assurance that they are trying to get all the CCTV camera footage from this place and they have made special investigation team to investigate this matter. If we can talk about opposition, whether it's BJP, Congress or Akali Dal, they have been hitting out at the government. They say the way this government was not able to handle the situation, it seems that law and order has been collapsed. So let's see that what will be the final outcome of this investigation, which has been started by the Punjab police, and special investigation team has been formed by the Punjab police. And the way we are showing all these CCTV camera footage to our viewers, let's see that whether the police will be able to identify these people or not. That okay. We have to wait and watch how the investigation will be unfolded in the coming days.
3: Thank you, Gurpreet, for joining us with all those details from Phagwara. But, you know, it's not just Punjab, ladies and gentlemen. There is the similar impact of rumors that we are now seeing in Ujjain as well. a tense showdown broke out in Ujjain between the police and a large group of protesters over the proposed partial demolition of the historic Shahi Masjid. Ujjain District Magistrate issued clarification and said the community is currently undertaking the task of relocating the religious shrine at the Kshatriya Chowk with their own hands. It is crucial to clarify that one should not pay heed to any rumors or misinformation. The city Qazi also stated the mosque issue has been resolved last night. Meanwhile, stones were hurled at security forces and there was massive tension at the spot. The police responded with firing multiple rounds of tear gas shells, dispersed the crowd and restored order. Lathi charge was also used by the police. Take a look.
10: उज्जैन में गोपाल मंदिर के पास स्थित शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने को लेकर विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। फिर पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े। दोपहर में एक बार फिर ऐसी स्थिति बनी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके चलते यहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ये वही शाही मस्जिद है जिसे तोड़ा जा रहा है। इसका एक हिस्सा सड़क चौड़ीकरण में आ रहा है, जिसके चलते इसे तोड़ा जाना था, लेकिन अफवाहों के चलते लोगों में आक्रोश आया और यहाँ पर पथराव जैसी स्थितियाँ बनी और बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
11: बरादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाज़ारों में न खड़े हों, बाज़ारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम वहाँ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपना काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाह है उन पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
12: शांति व्यवस्था कायम है और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी कानून व्यवस्था को भंग करने में, शांति व्यवस्था को भंग करने में कोई भी इस तरीके की चीज़ें ना करें। खासकर सोशल मीडिया पे मैं सभी से अपील करना चाहूँगा किसी प्रकार की भ्रामक खबरों पे ध्यान ना दें।
13: उज्जैन में बहुत गांधीवादी तरीके से जनता ने अपने 650 साल पुराने धार्मिक स्थल को बचाने का काम करा और वो लगातार दो दिन से वहाँ पे 8 से 10 हजार पब्लिक रोड पर बैठी थी, मस्जिद में जमा है। वहाँ दो लोग हैं, शेर काजी और खलीकुर रहमान साहब, और उज्जैन में एक नुमाइंदा कमेटी है। उस नुमाइंदा कमेटी के सरपरस्त भी शेर काजी हैं। लगभग उनका और गवर्नमेंट का डायलॉग हो गया और ये हुआ कि जो दुकानों के ऊपर का छज्जा है उसको हम हटाने के लिए तैयार हैं, जो दुकानों के ऊपर है। मस्जिद से कोई मुहादन नहीं हुआ और अभी न्यायालय में भी बहस शुरू होने वाली है, 1:30 बजे बहस शुरू हो जाएगी। तो मैं सबसे कहूंगा संयम रखें और पुलिस से कहूंगा कि कैन चार्ज और बलपूर्वक हटाने का काम ना करें।
14: हमारा काम 9:45 बजे से जो मस्जिद कमेटी है उसके द्वारा 9:45 बजे से लगातार जारी है और वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। अभी हमने पूरी पेरीमीटर सिक्योरिटी के लिए फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तहत हम लोग एक बार पूरे इलाके में, जो संवेदनशील इलाका है, वहाँ पर एक बार फ्लैग मार्च भी करेंगे और रात्रि में भी हमारे जो अश्वरोही दल हैं लगातार डिप्लॉयड रहेंगे और इस पूरे एरिया को हेविली डोमिनेट किया जाएगा, जिससे मस्जिद कमेटी को काम करने में किसी प्रकार का कोई इशू ना हो और बाकी सभी लोगों को ऑनबोर्ड लिया जा रहा है।
15: सर, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों पर FIR?
14: 15 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और 7 से ज्यादा FIR हम इस मामले में अभी तक दर्ज कर चुके हैं।
15: सोशल मीडिया पे भी निगरानी की जा रही, रात में भी पुलिस बल डिप्लॉयड रहे?
14: सोशल मीडिया पे भी डिप्लॉयमेंट, हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरी टीम द्वारा लगातार जो पूरा इलाका है उसमें डिप्लॉयमेंट बनाए रखा जाएगा।
16: देखिए, सिंहस्थ 2028 के जो कार्य हैं बहुत तेज गति से चल रहे हैं और जितना बड़ा आयोजन है, देश विदेश से जो है श्रद्धालु आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आ रही है कि सभी लोग स्वयं इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे धर्म हों, समुदाय के लोग हों, और उसी के क्रम में बड़ी संख्या में जो है ये कार्य हुए हैं। आज इसी के क्रम में छत्री चौक पर जो धर्मस्थल है उसको हटाने का कार्य इनके समाजजन स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें और धर्मस्थल को हटाने का कार्य इनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
3: So there are rumors which are leading to protests into violence. We have seen that in Punjab. We have now seen that in Madhya Pradesh as well. What happened in this case in Ujjain? In fact, agreement was reached overnight and talks between the administration and the city Qazi. But the rumors, ladies and gentlemen, kept saying that there was no agreement and the police is forcefully breaking the mosque. That resulted in that kind of problem in Ujjain. Now, affected portion is being removed by the community members, by the mosque committee itself. claim that the demolition was being forcibly carried out. That led to the violence that we saw in Ujjain and the tensions. Now, removal linked to road widening project. Crowd began gathering near the mosque when the rumor spread that it was to break the entire mosque, just a portion of the mosque which is being broken at this moment for the road widening project. Let me very quickly go across to Tanushree Desai, who's joining us from Ujjain at this moment. Tanushree, what is the situation on the ground at this moment? Is the situation under control? And what about the demolition process of that area for which the road widening is going on?
17: So for the Sihas 2028 road widening projects have been started all over the Ujjain, and for the same Kanthal Road to Gopal Mandir stretch, the mosque, the part of mosque which was being affected and which was been coming in way for the road widening was to be removed. But since morning it was observed that people from the community gathered over here, chaos was created in the whole area. But now the situation is under control. Police is currently present over here. So this is the mosque which was being under question. And now the people from the community themselves have been gathered at the mosque and are removing the part of the mosque which was coming underway for the road widening project. And along with that, police is also been deployed in entire area. And police is continuously surveilling the area and have been checking so that no chaos is been created now. And also with that, many FIRs have been registered. People who are creating chaos are being under police custody. And now talking about the entire situation right now on the ground, the current situation is under control and police has been deployed. The collector of Ujjain also said that people should not hear the social media rumors that were coming all over the social media, and many influencers are also arrested. And it has been also claimed that there were many AI generated videos which was showing that a part of mosque which was removed is not just a part of the mosque, the entire mosque is to be removed. So right now police has been deployed over here. Police team is on the ground so that there is no sort of chaos being created. And meanwhile, dispute that was erupted regarding to the Shahi Mosque, Muslim community were protesting for against mosque demolition. Regarding the situation, the administration deployed the entire police and held talks with community representatives, explaining to them that the situation is not for the entire mosque, but the just a part of the mosque has been removed. So representatives are now themselves removing the part of the mosque which was coming in the road widening project. This project okay. has been started in Ujjain is for the Sihas 2028, which
3: Right. Thank you for joining us with all those details. Tanushree Desai reporting from Ujjain. The situation at this moment is under control. But as I was telling you, ladies and gentlemen, and that is exactly what the worry is, how rumors quickly are spreading and creating the kind of impact and the violence on back of unsubstantiated claims. Whether it was the Fagwara incident, you know, in the LW Professional University or Ujjain. In fact, there was one more which happened in Punjab itself, where the rumors were spread that there was a haunted hostel rumor and two girls who went missing. After that, there was a lot of protest and tensions. Then in Ujjain, rumors were spread about the mosque demolition. And then again in LW Professional University, claims about two female students, those who had gone missing. On the other hand, the claim of the rumors was that the mosque is being demolished forcibly, and that led to the tensions. In Ujjain, this is the situation now is under control. So it is at the LPU, but the unverified post circulated on social media led to the students gathering, you know, and that first a peaceful protest led to this, the kind of violence that we have seen. The allegation is outsiders came in Ujjain. Misleading claims were made on social media, which led to a lot of people coming in, and the situation went out of control. The rumors spread about molestation and alleged gang rape in the case of Punjab. Then what the result was in Ujjain, that of these rumors, that stone pelting quickly started, and the police had to come in with some force to try and bring the situation under control. Some policemen were also injured in both these places. Now, this is something that people are warning about. With AI, it is so easy to generate this kind of fake narrative. So be very, very careful of what you read on social media and you decide to forward it. Unless and until it says verified, do not put that across on your accounts. With that, we are slipping into a short break. On the other side, big story from the national capital, a minister, Parvesh Verma, slapping a worker of the Aam Aadmi Party. Whether the worker or not, does the minister has the right to slap anybody? I'm coming back with that story after a short break.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे. द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द एनडीटीवी गोल्फ प्रोग्राम बिगिंस हियर. बिगर बोल्डर टीइंग ऑफ अक्रॉस इंडिया. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off 3rd October. Kotub Golf Course, Delhi. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani. Aar pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
1: I know the feeling of finding the middle of the bat. Now I'm chasing the cleanest swing and the perfect shot. You think you can beat me? See you at the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season 2, bigger, better. Game on.
0: The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off 3rd October. Kotub Golf Course, Delhi.
2: Watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links, and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters.
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening?
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
3: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
5: You watch us, viewer, you trust us, and now your vote can speak for what we mean to you. Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026.
6: Welcome back, ladies and gentlemen. Yesterday, a video from the national capital, Minister Parvesh Singh Verma, slapping a person who allegedly is Aam Aadmi Party worker, has gone viral. Look at this. Parvesh Verma comes out. This is when there were questions being raised about the quality of road construction. Aam Aadmi Party MLA Jarnail Singh and others had made a video. Parvesh Verma went there to check that whether the road quality was good or not. There were people, those who were, taking his video. And one of them, who is an Aam Aadmi Party worker, and while he was taking the reaction and of the minister, Parvesh Verma came out and slapped that person. You would see that in this video, how Parvesh Verma, the minister, goes out and slaps this person. Now, the question is whether the minister, no matter what had happened, does he have the right to slap anybody, even if that person is a political worker of the opposition? And that's the big question, ladies and gentlemen, which has now exploded as this Slapgate controversy is escalating in the national capital. Now, complaint has been filed against PWD Minister Parvesh Verma over the assault on Sahib Singh. That's the person who got slapped. Aam Aadmi Party has hit the streets demanding action against the minister. AAP workers protested outside Parvesh Verma's residence demanding the minister's arrest. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal has now visited Tilak Nagar, alleging corruption in the road work and demanding a probe into the construction work. Parvesh Verma, meanwhile, maintains that Aam Aadmi Party workers abused his family and says he reacted in anger. Sahib Singh has filed a complaint against Parvesh Verma and others. The police say complaints have been received from both sides and allegations are being verified. The BJP has also flagged an earlier assault case against Sahib Singh in which he was arrested as well. But again, it comes down to the question, no matter what this person said, Parvesh Verma could have gone and registered an FIR against him. Parvesh Verma could have in fact spoken against this person, but he decided to use violence. And if this would not have been the minister, would the police have reacted in the same manner? That's the important question. Take a look at some reactions.
7: तीन महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटॉर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है। जो लोग सारा एक्सटॉर्शन करते हैं वो दिल्ली का मोबाइल नंबर नहीं रखते, वो दुबई का मोबाइल नंबर रखते हैं ताकि कोई उनके मोबाइल को टैप नहीं कर सके।
8: कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच कर थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते। मैं आज यहाँ पे मांग करता हूँ कि आप मंत्री जी को बर्खास्त कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए और जनता से माफी मांगिए।
9: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितने का घोटाला हुआ है, उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था जिसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाले उनके घोटाले के वो हमने उनके सामने करा कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे, मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घुसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे।
10: उनको भी नुकसान हुआ है?
9: फ़ोन को भी नुकसान हुआ है, फ़ोन में भी किसी और के बारे में आपको दिखाऊंगा, लाइव चलते हैं, लाइव में ये चीज़ हुई है।
10: कितने बजे हुई है घटना?
9: ये घटना करीब अभी से 2 घंटे पहले हुई है। हमें 1:15 फ़ोन आया था, हम उसके आधे पौने घंटे तक यहाँ पे पहुँचे थे, 2:30 बजे के करीब ये घटना हुई है।
10: अब आगे इसमें क्या करेंगे? पुलिस को शिकायत दी है आपने कि नहीं दी है?
9: पुलिस को शिकायत दी है, हमने कॉल करी है, PCR आई थी, पुलिस के सामने ही हुआ है ये सब, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस हमें चुप करा रही थी, उन्हें भगा रही थी। पुलिस जो गुंडे होते हैं जैसे ना गली के गुंडे होते हैं नाबालिग, वैसे भगे हैं यहाँ के मंत्री जो है PWD विभाग के मंत्री, वैसे भगे हैं ये, और ये बोलते हैं जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं, चपेड़ मारी है, जान से मारने की धमकी दी है।
11: बड़े खेद की बात है, ये मुझे लगता नहीं कि इससे पहले कभी हुआ हो कि एक मंत्री खुद जाके एक MLA ने वीडियो डाली, तिलक नगर के MLA ने, और मंत्री खुद जाते हैं वहां पर, फोन करके एमएलए को बुलाते हैं और एमएलए पास होने के बावजूद 45 मिनट के बाद आते हैं क्योंकि वो लोग इकट्ठे करके ला रहे हैं। ये एक वहां के एमएलए के भतीजे हैं, पहले भी उन पे ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ है, करण सिंह सानो सुखबीर सिंह, यही काम उन्होंने पहले किया था, इस साहिब सिंह को साथ लेकर वहां के एक जेई को पीटा, बहुत बुरा हालात कर दिए और उसके बाद वो उसको पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लॉन्च करानी पड़ी और ये लोग अंदर बंद हुए थे। ऐसे के साथ केजरीवाल जी आप क्यों खड़े हैं, आज देश के लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं।
12: कल जिस तरह का विवाद यहाँ पे देखने को मिला, आप भी मौजूद थे, परवेश वर्मा मौजूद थे, आपकी ओर से कुछ कहा गया। अब बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि उनके परिवार को गाली दी गई, उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया, ये परवेश वर्मा कहना है, क्या कहना चाहेंगे?
13: देखिए, बच्चों की तरह आप सिर्फ और निराधार आरोप लगा रहे हैं, सारी चीज़ ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है और मैं तो कह रहा हूँ, मैं एक वीडियो जारी कर रहा हूँ जिसमें मेरे यहाँ गाड़ी उतरने से लेकर परवेश वर्मा जी का गुंडागर्दी करने से लेकर उनके भागने तक का सारा वीडियो, उस वीडियो में एक शब्द भी हमने अगर उनके परिवार के बारे में बोला हो तो हम पर कार्रवाई करें। पर जो साफ साफ दिख रहा है कि परवेश वर्मा जी सवाल पूछने वाले लड़के का मोबाइल तोड़ रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं और सड़क की क्वालिटी की हकीकत उनको दिखाई, तो PWD के इंजीनियर से सवाल करने की बजाय हम पर चढ़ रहे हैं। इस सब मामले से ये जाहिर होता है कि वर्मा जी इस करप्शन में शामिल है और ये जो क्राइम इन्होंने किया, थप्पड़ मारा एक नौजवान को, उसके ऊपर FIR अभी तक नहीं।
6: ऑलराइट, माय कॉलीग तेजश्री इज नाउ जॉइनिंग अस फ्रॉम द विकासपुरी पुलिस स्टेशन इन द नेशनल कैपिटल वेयर द आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। दे वॉन्ट एक्शन तेजश्री अगेंस्ट परवेश वर्मा। वॉट इज द पुलिस सेइंग अबाउट दैट?
14: Well, absolutely, that development we'll come to know in just some time from now, because what we are given to understand is Saurabh Bharadwaj, Janrail Singh and the man who was allegedly assaulted by Parvesh Verma is inside the Vikaspuri police station, and outside here we are giving you the visuals of just outside Vikaspuri police station where the Karyakartas are sitting on protest and they are also demanding resignation of Parvesh Verma. The accountability needs to fix this, they are saying. And also, in fact, remember that the controversy actually began after a video from Parvesh Verma's road inspection in Tilaknagar, just which is few meters away from this very police station, which showed that minister allegedly slapped a man who was recording a video and while exchange between him and AAP MLA Janrail Singh. And then later on, he also did question the quality of the road. We also did report from the very road showing that how the situation of that road, the condition actually of that road was quite poor and crumbling. And here, in fact, that is why the AAM Aadmi Party Karyakartas have been protesting. But this is not just only about road, Ankit. This is also about the misconduct of a neta towards an AAM Aadmi, because that is completely unacceptable is what we saw. But keeping that aside and talking about the political war of words, yet it has intensified between Aam Aadmi Party and the BJP, where Aam Aadmi Party has been demanding resignation of Parvesh Verma, seeking accountability and responsibility for whatever has happened. Arvind Kejriwal, the convener of AAP, had also reached the very spot where the incident took place. We were reported from there as well. And also, in fact, the BJP has been now stating that it is nothing but just a political gimmick.
6: No matter, the visuals are very, very clear. A minister assaulted the Aam Aadmi Party worker. No matter, as I said, no matter what the provocation was, nothing justifies violence. And that is exactly what the minister chose. And let me also tell our viewers, there is no special immunity that a minister has when it comes to taking law in their own hand, waiting for what the Delhi police does in this case. All right, with that, we are slipping into a short break. Coming back with much more on the other side. Stay tuned, ladies and gentlemen.

0: बहुत सारे एथलीट रिटायर कर जाते हैं, लेकिन आपके बारे में मुझे लग रहा है पिछले 10 साल से मैं सुन रही हूँ आप रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो। कुछ रिकॉर्ड बचा है, कुछ टारगेट्स इसके बाद भी है?
1: हाँ जी बिल्कुल।

0: anyone as in our university, but ultimately police, we are in regular talks with them. They are also identifying these antisocial elements, and they say we have identified few and they will release their statement in some time from now.
1: You know, things really went out of hand when NH44, the national highway outside your university, was blocked. Were there students involved in that protest? Did they block the highway?
0: Yes, there were certain students who got into this along with them. But they were again saying that we have no intentions to block the national highway. We were there for dialogue only. So presently, there were certain students. Yes, definitely, of course.
1: Then who exactly was behind that particular protest? There were dramatic visuals coming from right outside your campus. And in fact, that is where the police had to eventually carry out a lathi charge.
0: I'm sure that all these antisocial elements come from 3-4 elements, that maybe a local community ecosystem, maybe some political. It's very early to say anything presently, but we definitely identify that they were not our students.
1: Because Dr. Lakhanpal, you were present on the ground. Do you suspect that there was a political angle to this as well? Some political elements could have been present in that protest, because your founder and chancellor is now a BJP MP. A lot of political parties are alleging that this could be vendetta politics. From your perspective, did you see any such political involvement?
0: No, at front end there was nothing such observed.
1: Okay, so do you think that the police response was timely in this case? Were they present on time, or was their response delayed? As a witness, how did you find the police managing the situation?
0: In terms of late intervention and all that, I will say that they were bang on their time and they were doing their best. If I say it can be handled in a better way, so yes, I say there are a lot of intelligence, intels and all that, which might have known that on day two, there will be again vandalism. So I think so that part might have been improved.
1: Well, the good news is that at least now things are quiet, things are peaceful on campus. Let's hope it remains this way, because a large number of students have now left the campus, gone back to their home states. Their education should not be impacted, whatever the politics around this is. Thank you very much, Dr. Saurabh Lakhanpal, for having joined us. Let's now turn to a story that we've been following very, very closely on the show: the death by suicide of IIT Bombay student Sahil Wakode and the questions that still remain. His parents have now started their hunger strike at Mumbai's Azad Maidan. They are demanding the arrest of Professor Dula. The family says that they have received no updates from the police on the investigation so far. Remember, the Mumbai Police Crime Branch is probing this alleged abetment to suicide case and has so far recorded the statements of more than 25 people. Investigators are also examining the phone records, CCTV footage and other digital evidence to piece together Sahil's final hours. In fact, let's go across now to Sahil's parents, joining us live from Azad Maidan. Okay, let's go across to Mr. Ravindra Wakode. Sir, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. पर आप जो अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन आप जो आपने शुरू किया है आजाद मैदान में, आपका डिमांड क्या है? अब आपकी क्या डिमांड है?
2: डिमांड ये है कि उसको अरेस्ट किया जाए.
1: पर सर क्यों प्रोफेसर डूला को अभी आप अरेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं? क्या आपका अभी भी डिमांड उसके अलावा कुछ?
2: वो उनको भागने का मौका ना मिले, उनके जो सबूत मिटाने का मौका ना मिले, इसलिए उनका अरेस्ट करिए.
1: आपको लगता है कि क्या वो सबूत मिटा रहे हैं? क्या आपको कुछ ऐसा सुनाई दिया है कि वो सबूत मिटाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर वो भागने की कोशिश कर सकते हैं?
2: अभी जैसे सीसीटीवी फुटेज लीक हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज जैसा ये मामला लीक हो रहा है मैडम, तो आगे भी कुछ भी हो सकता है.
1: जैसे क्या हो सकता है? आपको लगता है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रोफेसर डूला ने लीक
2: कर सकते हैं? अभी ये उसको अरेस्ट करिए, उसके बाद वो सब पता चलेगा मैडम.
1: क्योंकि आपकी एक ही मांग रही है कि उनका अरेस्ट किया जाना चाहिए. आज के अखबार में ये छपा है कि साहिल ने उस दिन के बाद जिस दिन एग्ज़ाम था उसका, उसके बाद अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया और पुलिस ये कह रही है, ऐसा अखबार में छपा है, कि अपनी दोस्त को उसने बताया कि मेरा जो थर्मोडायनामिक थ्योरी का पेपर है वो अच्छा नहीं गया और अब मैं चिंतित हूँ क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि ऐसा अखबार में लिखा गया है
2: इसके बारे में? नहीं नहीं वो मेरे को कुछ मालूम नहीं, ये जांच का मामला है, वो जांच में सामने आएगा।
1: पर रविंद्र जी, अगर जांच के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं और सच बात है जांच में सारी डिटेल्स आएंगी, तो फिर जांच चलते हुए भी अभी भी आप क्यों एडमिंट हैं कि प्रोफेसर डूला का पहले अरेस्ट होना चाहिए? जाँच तो चल ही रही है ना, लोगों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो रहे हैं।
2: अरेस्ट हमारी मांग है, वो अरेस्ट करिए प्लीज।
1: आप ये आमरण अनशन में कब तक बैठेंगे?
2: जब तक वो अरेस्ट नहीं होते तब तक मेरा अनशन चालू रहेगा।
1: पर ये कब तक चलेगा?
2: ये मेरे को इसमें मैडम, इसमें मेरे को सुरक्षा भी जरूरी है, हाँ इसमें मेरी सुरक्षा भी जरूरी है, मेरी फैमिली की। हाँ
1: सुरक्षा मतलब किससे सुरक्षा चाहिए आपको? क्या आपको जान का खतरा है?
2: सुरक्षा मिलनी चाहिए, आरोपी फरार है तो इसलिए मेरे को सुरक्षा जरूरी है।
1: आरोपी फरार यानी कि कौन? प्रोफेसर डूला की आप बात कर रहे हैं, उनसे आपको?
2: वैसे नहीं जान, आरोपी जब तक अरेस्ट नहीं होता तब तक मेरे जान को खतरा है, ऐसे मेरे को लग रहा है।
1: किससे आपको खतरा हो सकता है?
2: ये आरोपी से।
1: आपको लग रहा है कि वो आपको किस तरीके से हानि?
2: अरेस्ट होने के बाद मैं मेरा अनशन छोड़ दूंगा।
1: ओके, दोज आर वेरी सीरियस, मोर सीरियस एलिगेशंस बीइंग मेड। रविंद्र जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। द फैमिली इज क्वाइट क्लियर दैट दे वॉन्ट द अरेस्ट ऑफ प्रोफेसर डूला बिफोर एनीथिंग एल्स, एंड नाउ Sahil's father saying that he fears for his life and wants security till the time that Professor Doola is not arrested, even pending investigation. Bahut dhanyawad humse baat karne ke liye. And thank you very much for watching as well. This is a story that we are going to keep following up on, because on both sides, there are demands, there are claims, but justice must be done. Thanks for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: A healthier India doesn't happen in a day.
3: It starts with the health choices that we make every day.
4: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
5: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
4: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health

0: वाह
1: मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
3: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's that to be? How?
2: The show that sets the prime time agenda.
3: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
2: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
4: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: यू वॉच अस यू ट्रस्ट अस नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू। योर सपोर्ट हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनडीटीवी'स जर्नी एंड एट द आईटीए अवार्ड्स 2026 वी आर आस्किंग फॉर योर वोट। वोट फॉर एनडीटीवी एंड शो योर सपोर्ट फॉर द जर्नलिज्म यू ट्रस्ट। इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मोमेंट्स एंड एवरी वोट मीन्स अ ग्रेट डील टू अस। सो डू वोट, शेयर द लिंक्स एंड चीयर for NDTV.
4: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
6: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
4: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger. Boulder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
1: A healthier India doesn't happen in a day.
7: It starts with the health choices that we make every day.
8: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आग प्योर मसाला।
4: A healthier India doesn't happen in a day.
5: It starts with the health choices that we make every day.
6: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
4: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
7: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
6: One informed choice और एक healthier action.
4: Giving better health in more hands. Every day.

0: is that we make every day.
1: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
3: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
4: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health in more hands every day.

0: Weeks after boardroom split over N. Chandra's return, Tata Trust proposed Tata Sons rejig to keep Tata Sons private. Amidst the raging AI slowdown debate, NVIDIA launches system it says can rein in AI agents if they try to go rogue. New launch after instances where OpenAI, Anthropic and Meta saw their AI agents break out of test setups. The NDTV Defence Summit has set the agenda. It is the talk of the town. It is the big buzz in our power corridors. And I have distilled a whole day's incredible event into 15 big national security news breaks that have completely taken over the media headlines. That's coming up right here on the show. And I do not want you to miss an unmissable speech by the Chief of Army Staff, his first speech after taking over as India's Army Chief. General Dheeraj Seth makes the incredible claim that the land victory is really the only undisputable marker of a combat win. This coming 15 months after Operation Sindoor, you can imagine how that's gone. Let's get started with our big story tonight. And welcome to India Matters. Viewer, the NDTV Defence Summit over the weekend has set the national security agenda. From the future of India's fighter fleet and indigenous weapons to military reform to a big warning to Pakistan, defence technology and the next phase of India's strategic transformation. The headlines from this stage are now a huge talking point across defense, national security, and political circles. I've been a defense journalist for over 22 years, and I can tell you, I have never been to an event that has spawned so many talking points, so many news breaks, and so many headlines. Tonight, I'm going to distill it all down to the 15 biggest headlines from the NDTV Defense Summit 2026. The announcements, the revelations, and the big signals about where India's military and national security is headed. Let's go straight in. And the first big headline from the NDTV Defense Summit is from the Raksha Mantri himself, Rajnath Singh, who's confirmed first, that India isn't just developing a fifth generation fighter, but also a sixth generation fighter program.
1: साथियों आज भारत में एरोप्लेन के इंजन से लेकर ड्रोन इंजन तक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं और काफी हद तक लगातार कामयाबी हम लोगों को मिलती जा रही है सिर्फ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स ही नहीं भारत सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है अगले 10 वर्षों में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और साथियों आज दुनिया भारत को केवल डिफेंस इंपोर्टर के रूप में नहीं देखती है 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट approximately 38,424 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है मेड इन इंडिया अब केवल एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल नहीं है अब भारत की फैक्ट्री में केवल हथियार नहीं है भारत के प्रति भरोसा भी बनता है आज यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब भारत का अप्रोच केवल युद्ध के लिए तैयार रहने का नहीं है हमारी कोशिश ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटी और इको सिस्टम बनाने की है जो युद्ध को रोकने के लिए क्रेडिबल डिटरेंस भी साबित हो और यदि चुनौती सामने आए तो उसका प्रभावी जवाब देने में हम सक्षम भी हों
0: Headline number two from the NDTV Defence Summit, Rajnath Singh, the Defence Minister, choosing the 10th anniversary of the Uri surgical strikes to issue a big warning once again to Pakistan.
1: जब तक हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद की स्टेट पॉलिसी पर कायम रहेगा भारत की आतंकवाद के खिलाफ हर तरह के स्ट्राइक के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं यह हम पड़ोसी को भी बतलाना चाहते हैं दुनिया को भी बतलाना चाहते हैं भारत कोऑपरेशन चाहता है लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की कीमत पर नहीं भारत ग्लोबल स्टेबिलिटी

0: सुरक्षा मतलब किससे सुरक्षा चाहिए आपको? क्या आपको जान का खतरा है?
1: सुरक्षा मिलनी चाहिए, आरोपी फरार है तो इसलिए मेरे को सुरक्षा जरूरी है।
0: आरोपी फरार यानी कि कौन? प्रोफेसर डूला की आप बात कर रहे हैं, उनसे आपको?
1: वैसे नहीं जान, आरोपी जब तक अरेस्ट नहीं होता तब तक मेरी जान को खतरा है, ऐसे मेरे को लग रहा है।
0: किससे आपको खतरा हो सकता है?
1: ये आरोपी से।
0: आपको लग रहा है कि वो आपको किस तरीके से हानि?
1: उनको अरेस्ट होने के बाद मैं मेरा आंसन छोड़ दूंगा।
0: ओके, दोज आर वेरी सीरियस, मोर सीरियस एलिगेशंस बीइंग मेड। रविंद्र जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। द फैमिली इज क्वाइट क्लियर दैट दे वांट द अरेस्ट ऑफ प्रोफेसर डूला बिफोर एनीथिंग एल्स, एंड नाउ साहिल्स फादर सेइंग दैट ही फियर्स फॉर हिज लाइफ एंड वांट्स सिक्योरिटी टिल द टाइम दैट प्रोफेसर डूला इज नॉट अरेस्टेड इवन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एज वेल। दिस इज अ स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू कीप फॉलोइंग अप ऑन, बिकॉज on both sides there are demands, there are claims, but justice must be done. Thanks for watching.
2: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
3: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Rachel Sager.
2: The show that sets the prime time agenda.
3: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
2: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
4: I know the feeling of finding the middle of the bat. Now I'm chasing the cleanest swing and the perfect shot.
5: The sport may change. The champion's instinct doesn't.
6: It's not just about the game. It's the mindset, the focus, and the instinct to compete.
7: Across India, on some of the country's finest greens, top golfers take on top business leaders on the fairways.
2: 10 pro-ams, 10 different challenges, and 10 courses.
8: India's premier pro-am is back.
5: Season 2, bigger, better. Game on.
4: You think you can beat me?
6: The course of champions, conversation of leaders.
9: The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
10: A healthier India doesn't happen in a day.
11: It starts with the health choices that we make every day.
12: Har ghar tak sehat ki sahi jankari pahunche aur har haath mein ho बेहतर सेहत का अधिकार।
10: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
13: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
12: One informed choice और एक healthier action.
10: Giving better health in more hands every day.
9: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders.
14: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. The U.S. Army is assessing report units for possible use by Southern Command within 90 to 120 days. The move comes as Washington ramps up pressure on